0: शाम मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान यूडले।
1: अच्छा मैं ना यूडले ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही हाई नोट पर है फिलहाल। मैं आपको बताती चलूँ, विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू ए पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू ए यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन। इट एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait, call James today at 321-888-7345. It is 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turns costs into cash. 9 मिनट ऊपर हो चुके हैं 7:00। अगर मेरी घड़ी से देखोगे तो, अपनी घड़ी से देखोगे तो 9 कुछ तो हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अयान एंड डीवा जिनकी मम्मी जो है पाकिस्तान चली गई हैं, दे वांटेड मी टू सेलेक्ट अ सॉन्ग फॉर देम एंड आई हैव सेलेक्टेड द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स, क्योंकि वो ही मैं करती हूँ, दैट्स माय नीश। इसके अलावा नीश आज शायद इसमें भी क्रिएट हो रही है कि मेरे से ज़्यादा अगर किसी को डांट पड़ी है और ऐसा कोई डायलॉग है आपकी ज़िंदगी में जो मम्मी ने बोला है और वो मुझे नहीं पड़ा है, अब आप सोचोगे ये कैसे पता चलेगा ना शिवमी, तो मैं बताऊँगी यार। कॉल करोगे आप मेरे को, फिर आप पूछोगे कि यार ये वाली डांट पड़ी थी, ये कहा था मम्मी ने, ये मैं कहूंगी कि नहीं यार ये वाला नया है। तो ऐसे कैसे कर सकते हो आप, 9722355555 ये ऐसे कर सकते हो कि कॉल कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि ऐसा अलग हटके ऐसा क्या डायलॉग था जो आपको पड़ा हो और मुझे नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता अभी एक्चुअली गेम जो चल रही है, मुझे अभी तक कोई न्यू वाला डायलॉग नहीं पड़ा, मतलब मुझे नहीं पड़ा एंड किसी और को पड़ा। एक प्यारे से इंसान ने कॉल करा और फिर मेरे को बोला यार मेरे को ना बैट से भी मार पड़ी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपने टॉप अप कर लिया है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर्स दो लड़कियाँ थी ना घर में, तो बैट नहीं था, बट हाँ कपड़े धोने वाला एक कुछ होता था उससे भी पड़ी है। तो एक बारी मम्मा ने चाबी फेंक के, यू नो सबके हमारे घरों में एक वो गोदरेज, यू नो स्टील वाली कुछ तो अलमारी होती थी ना, एल्युमिनियम स्टील, आई डोंट नो, वो जो खुलती थी बस उसकी एक चाबी होती थी, ठीक है, तो वो फेंक के मेरी तरफ मारी थी और मुझे उससे भी मार पड़ी थी। ऐसा क्या है आपका ना नीश, मतलब आपको ऐसी किस चीज़ से मार पड़ी है या ऐसा क्या डायलॉग पड़ा है जो मुझे नहीं पड़ा, तो 9722355555 अगर आप इससे टॉप कर सकते हैं ना तो मतलब आप टॉपर हैं इससे मुझे यही पता चलता है, ठीक है। फिलहाल आयान एंड दीवा के लिए ये गाना, दिस इज एक्चुअली धुंधर मूवी से, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। PhD करी है यार इस इंसान ने, सतिंदर सरताज की मैं बात कर रही हूँ, म्यूजिक में PhD, हिज वॉइस सेज इट एंड जैस्मिन सैंडलेस इज गोइंग राउंड एंड राउंड अराउंड द वर्ल्ड विद हर आवाज एज वेल। बोथ ऑफ देम केम टुगेदर in this amazing melody, amazing soundtrack. Upar se why am I forgetting Shashwat? Kamal kar diya yaar is aadmi ne.

हफ्ते दिलजीत है ना. What is this date today? 10th. In 6 days, Diljit is going to be here. It's a sold out show, I guess. And if you are not there, then where are you? This man has taken over the world. Punjab ko aur Punjabi boli te Punjabi music. He has brought it, I think. And he's arrived himself to the world map. I am eagerly waiting for दिलजीत्स कॉन्सर्ट. इफ़ यू आर लाइक मी, डी से दिल्ली वाली हूँ, डी से डलिस में रहती हूँ, डी से दिलजीत की फैन हूँ, और डी से डोंकी नहीं हूँ, आर से आर जे शिवमी हूँ, एस से शिवमी हूँ. मतलब इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी एट, फॉलो मी ऑन इंस्टा, आर जे शिवमी है मेरा इंस्टा हैंडल. एंड द नेक्स्ट ट्रैक आई हैव फॉर यू इज़ फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ.

सजना वे सजना वे सजना, अमेजिंग ट्रैक. अच्छा, राजकुमार राव है यार इसमें. किस किस ने टोस्टर देख लिया है? आई मीन, एक होता है फ्रूगल इंसान और एक है राजकुमार राव इन दिस मूवी विच इज टोस्टर. इफ यू हैवन वॉच्ड इट, इट्स ए ग्रेट वॉच. अच्छा, ग्रेट वॉच के अलावा मैं बैड वॉचेस भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया होता है कुछ चीज़ों पे, फिर मैं आके उनको रेडियो पे बता देती हूँ कि भाई आप मत वेस्ट करना अपना टाइम. वो है दो ऐसी सीरीज, एक है ग्लोरी. आई थिंक टू मच, क्या कहें, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ढूंढना है. आई मीन टू मच, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, खैर टू मच है ग्लोरी. आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड. अगर मैंने कुछ भी वर्ड गलत बोला ना, मतलब द होल ऑफ रेडियो, द होल ऑफ डैलस विल कम आफ्टर मी एंड से कि अरे गलत बोल दिया मैडम. तो मैं वो गलत नहीं बोलना चाहती. ऑल दो आई लव क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी, आई मीन द वंस दैट आर ऑलरेडी देयर, उनको 10 ऊपर करके मैं बताती हूँ, ठीक है, 10 into, ये याद रखना. अच्छा, ग्लोरी एक ऐसी सीरीज लगी मुझे कि ये नहीं भी देखते और ये नहीं भी बनती तो कोई बात नहीं थी. मतलब बन तो रहे हैं यार हरियाणा में, मतलब बॉक्सर वन आफ्टर दी अदर एंड पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब, पर ये सीरीज ना बनती उस अल्हड़ दिमाग से तो कोई बात नहीं थी. दूसरा थी, बताऊंगी यार, 2 मिनट रुक जाओ. फिलहाल दिलजीत दोसांझ एंड डेविड गेटा इज हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स एंड आई एम टू. मतलब ये आदमी जो है ना, ये दिन ब दिन हसीन होता जा रहा है और दिन ब दिन मुझे इस आदमी से होती जा रही है एक्स्ट्रा एंड ओवर मोहब्बत. हु इज दिस पर्सन? दिलजीत दोसांझ, लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: This is Shivani, and you're listening to me on the airwaves of Fun Asia 729 by my studio clock. If you are enjoying the weather, I am actually absolutely loving the weather outside. I think thunderstorms are coming in and going out. So far, मुझे मिकेनी में थोड़ा क्लियर लग रहा है. आप कहाँ हैं? कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555. And if storm is around you, yeah, you are into the storm, be careful while driving.
1: You turned down that job to become a diving instructor?
2: Yeah, I thought Ma would say no.
1: And?
2: She said, build your life the way you dream it.
3: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
4: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
5: आती है यार, बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
5: सच में बिल्कुल घर जैसा.
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
7: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqah and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
13: I am Rahat Fateh Ali Khan, and you are listening to Radio Fun Asia.

ऐसे लगता है ना, मोस्टली जब कहीं पे कुछ नहीं होता वहाँ वो खुदा होता है, और जहाँ पे एक्चुअली में कहीं कुछ नहीं होता वहाँ माँ होती है, ऐसा ही कहा जाता है ना. वेरी हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ऑल द लिसनर्स आउट देयर. दिस इज आर जे शिवमी ऑन 104.9 FM. इफ यू हैवन फॉलोड मी एट, फॉलो मी ऑन इंस्टा. आर जे शिवमी इज द इंस्टा हैंडल. अच्छा, मैं आपको ग्रुप प्रवेश के बारे में बता दूँ. सो ग्रुप प्रवेश .com ब्रिंग्स यू द इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो हैपनिंग May 9th, May 10th at the beautiful Hyatt Residency, Frisco, Dallas. Meet top builders from cities like Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Chennai, Pune and Delhi. NCR showcasing over 200 premium projects from luxury apartments and villas to plots and farmland. Whether you're looking for ready-to-move-in homes or exciting new launches, enjoy exclusive expo-only deals designed just for you. Just don't miss out on the dreams you own it, ladies and gentlemen. Register now at grouppravesh.com and take the first step towards your dream home in India. The next track I have lined up for you is a track that I absolutely love. And the moment ye track kahin play ho raha ho, kisi store mein chale jao ya kisi kahin dost ke ghar sun rahe ho, background mein music play kar raha ho, ek नाम जो ऐसे चमक के बल्ब की तरह सामने आ जाता है, जल जाता है, लाइट विच इज़ ऑलरेडी देयर, बट जस्ट इट जस्ट लाइट्स अप इन योर ब्रेन, लाइट दैट लाइट्स अप इन योर ब्रेन, आई मीन ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, ओके. दिस ट्रैक मेक्स मी थिंक ऑफ दिस गाय. आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह. वॉट अ गाय, सुशांत सिंह राजपूत. वी ऑल मिस हिम. एंड दिस डेब्यू मूवी से लिया है ये गाना, शुभारंभ. आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक. मेरी तरफ से सभी डैलस लिसनर्स को.

7:48 PM by my studio clock. अच्छा यार, एक बात मुझे पूछनी है. गाना बड़ा ही प्यारा लगता है मेरे को, दीवानी मस्तानी, बस मुझे एक चीज जाननी है. इनकी टोपी दीपिका पादुकोण की, ये इन प्लेस इतना डांस कर रहे हैं जोर जोर से, गोल गोल घूम के, टोपी क्यों नहीं गिरी? मतलब मेरा ये जेन्युइन क्वेश्चन है. एक और मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि बस ऐसे वेले क्वेश्चन हो जाते हैं यार कभी कभी. ये इतना है ना पॉडकास्टर्स, इतना तो एक तो ज्ञान मैं सारा दिन लेती हूँ, हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है मेरे अलावा. चाहती हूँ कि मैं सोचूँ मैं भी अपना एक पॉडकास्ट खोलूँ, ठीक है? ये इतना जो ज्ञानेश्वर लोग बैठे हुए हैं पॉडकास्ट पे, ये कहते हैं कि चंद्रमा इस तरफ से है और मून इस तरफ से, फिर आपका प्लैनेट, फिर आपका मूलांक, फिर आपका ये खर. यार मैं सुबह से शाम तक ना यही निपटाती रह जाती हूँ कि किस दिशा में बैठ के क्या करूँ. शाम तक फिर नया एक पॉडकास्टर आ जाता है यार रीलों पे, फिर वो कहता है कि नहीं, आप जिस दिशा में बैठी थी ना मोहतरमा, वहां से मुंह उठाओ और दूसरी दिशा में हो जाओ, क्योंकि वो ही सही दिशा है. तो आप बताओ दशा और दिशा क्या होनी चाहिए सही. 9722355555 है और मैं कर रही हूँ यार सिर्फ मटर गश्ती सही में.

ये नहीं करा है तो मैं कर देती हूँ. अच्छा यार, आज मे 10th है. समथिंग दैट आई वॉन्ट टू यू नो, देयर इज अ मैसेज आई थिंक फ्रॉम द यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, इट हैज कम टू मी एंड आई थॉट कि आई विल शेयर इट विद यू ऑल टुडे. इट गोज लाइक दिस. One day you realize the real blessing in life wasn't the life you imagined. It was the strength you found in life you actually lived. The quiet resilience, the softening, the way you kept showing up even when no one knew what it took. Gratitude hits different when you finally see the hardest chapters where the ones that you grew you the most. What a thought, and I thought I'll share it with you. A lot of times we show up to places wherein our heart says don't, and let's just chuck it. But then we do, right? We just want to, we just have to, not even want to, we just have to show up the places. Showing up matters, be it wherever, be it for your child, be it for your loved one, be it in the gym, be it at a random place where your heart says yahan to nahi aana tha par aaj pahunch gaye, but then everything just fits in later on in life. You know, there is a reason ki aap jahan hai wahan aap hai. There is a reason I'm behind the mic and you are listening to me through this radio today, and this message had come through me to you all. Ladies and gentlemen, this is RJ Shivmi on 104.9 FM. There is a beautiful request from a very amazing listener, Saad, and he says, Happy Mother's Day to everybody, which I wish as well, and of course the whole of Fun Asia team today. And this song is from the movie Fada Poster Nikla Hero. This is RJ Shivmi signing off for today. I see you every Friday, 12:30 se 2:30 baje tak karungi main aapko entertain. Till then, stay healthy, stay wealthy, and of course, stay wise. Just like me, if I have rocked your boat today, hit a follow on Insta. I'm sure you will not be disheartened. अच्छा, एक जाते जाते मैं आपको बता दूं फन पिज्जा किचन के बारे में. ये तो मैं बताना ही भूल गई. आज रेनी वेदर है एंड क्या बता, आपके टेस्ट बड्स कह रहे हो थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए तो. सो फन पिज्जा किचन इज हियर, योर चांस. भाई वेजी लवर हैं तो अचारी पिज्जा ट्राई कर सकते हैं, पैक्ड विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. एंड फॉर द मीट लवर्स, ए तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोक की परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर, भाई आपके टेस्ट बड से. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट द फन पिज्जा किचन. फॉर डिटेल्स ऑफ कोर्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट funpizzakitchen.com. गाना जन्म जन्म जन्म. दिस इज आरजे शिवमी साइनिंग ऑफ.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: Astrology readings for guidance only and results may vary.
5: Inefficient man.
6: Very complex.
7: Bit clumsy hoy.
8: अरे confusion ही confusion है। अबे
9: Disjointed software को यूज करना इतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. Kamanik, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
12: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
13: Yeah! Abhi baje aayega na bhido.
14: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe!
15: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Good evening, Dallas. I hope you're having a fantastic time with your friends, family, and loved ones. यार कैसा वेदर है यार, ladies and gentlemen. हम बॉम्बे वाले को एक कभी भी किसी को पूछो ना, यार खाना कैसा था? थर्ड क्लास. यार वेदर कैसा है? एकदम थर्ड क्लास. तो किसी ने मुझे पूछा कि ये थर्ड क्लास चीज है क्या, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको. क्या है, हमारी रेलवे हमारी लाइफलाइन है बॉम्बे की, तो हमारे लैंग्वेज में भी वो दिख जाता है. सो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास डब्बे है हमारे रेलवे के. और जब ऐसा वेदर आता है जैसा अभी डैलस में है, हम बोलते हैं भैया क्या थर्ड क्लास वेदर है. बट द गुड थिंग इज, ऐसे वेदर में सारे काम हो जाते हैं. यू नो ऑल दैट पेंडिंग वर्क दैट यू हैव बीन सिटिंग ऑन इट फॉर डेज एंड वीक्स, दिस इज द डे व्हेन यू अकम्प्लिश दैट, राइट? हमारे शो का मोटो यही है लेडीज एंड जेंटलमैन, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो. क्योंकि शाम के जैसे 6 बज जाते हैं संडे को, लोगों की धड़कनें बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द वर्क वीक. सो दैट्स आर मोटो, टू मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेस फ्री. एंजॉय आर म्यूजिक, एंड इफ यू वांट टू गिव अस अ शाउट आउट, इफ यू वांट टू गिव अस अ सॉन्ग रिकमेंडेशन, स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम, एंड यू कैन ऑल्सो हिट अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक एट प्रेम जोशी पॉडकास्ट. प्रेम जोशी पॉडकास्ट DMs आर ओपन. Here we go. Make sure that you let us know the songs from the albums and not from the movies. From 8 to 9, we play pop songs.

पॉप सेगमेंट है हमारा और यूफोरिया का गाना नहीं बजे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम। आई होप यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल संडे इवनिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव वंस। कीप हिम कमिंग यार, अभी तक के सारे, ऑलमोस्ट सारे गाने हमारे लिसनर्स ने हमें रेकमेंड किए, सो लेट अस नो योर जैम एंड वी विल प्ले देम हियर लाइव ऑन द एयर वेव्स ऑफ फनेशिया। 972-235-555-555।

0: याद। 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: सब कुछ साफ रख सकते हो
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
13: चिकन बनाना
14: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
19: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
20: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

क्या गाना है यार, बल्ले। आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू अदनान सामी यार, ये गाना मैं कभी भी सुनूं यार एकदम झूम उठने का मन करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम। और गाने एक से एक बैक टू बैक रिकमेंडेशन आ रही है सब डारस वासियों की वजह से। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू हु पिक्स अप द फोन एंड कॉल्स अस एंड टेल्स अस, ए यार आपका सेगमेंट बड़ा मजा आ रहा है, एक और गाना हो जाए, ऐड हो जाए आपके लिस्ट में। एंड यू नो आई लव डूइंग दिस, आई लव टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, आई लव हैविंग अ चैट विथ यू। सम पीपल ऑल्सो टेल मी अ बैक स्टोरी बिहाइंड दिस पर्टिक्युलर सॉन्ग दैट दे आर रिकमेंडिंग। Why do they like this song? What is the story associated to it? You know, so let us know 972-235-5555. एक जबरदस्त giveaway है मेरे पास, देवियों सजनों। Yes, as all my loyal listeners already know, के हम बॉलीवुड क्विज खेलते हैं ये शो में एवरी संडे 8 to 10 में हम एक बॉलीवुड क्विज खेलते हैं। तो मैं एक छोटा सा हिंट डालने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ठीक है? आपको सिर्फ जाना है PREMJOSHI पॉडकास्ट पे और हिंट डालने वाला हूँ मैं हमारे बॉलीवुड क्विज का। ठीक 9 बजे के बाद हम खेलेंगे वो हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज। और इस बार के हमारे ग्रैंड स्पॉन्सर है द फ्लेवर लाउंज, जिसकी वजह से हम खेल पा रहे हैं। सो बिग बिग शाउट आउट टू फ्लेवर लाउंज, एंड इफ यू हैवंट ट्राइड दिस रेस्टोरेंट आई हाईली रिकमेंड यू दैट, एंड आई एम गोना गिव यू अ रीजन। क्योंकि जो भी हमारे साथ ये बॉलीवुड क्विज खेलेगा और जीतेगा उसे मिलेगा या तो ये दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी। सो आप वेजिटेरियन है तो आपको दाल मखनी ले सकते हैं आप, या फिर इफ यू प्रेफर नॉन वेज यू कैन चूज द ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज। इट्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। आई हाईली रिकमेंड यू चेक हिम आउट एंड आई एम गिविंग यू अ रीजन। सो मेक श्योर यू गो टू द इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर, क्योंकि वहां पे हिंट आने वाला है। प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट।

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। नुपुर जी ने हमें रेकमेंड किया है छुई मुई सी तुम लगती हो, प्रीति जांग्यानी एंड अब्बास का ये गाना है। आई होप यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस सॉन्ग, बिकॉज दिस सॉन्ग वॉज सच एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स सिंस दिस सॉन्ग वॉज लॉन्च्ड एंड इट्स स्टिल सो फ्रेश एंड एवरग्रीन। नुपुर ने रेकमेंड किया है, अगर आपके पास ऐसे गाने हो तो लेट अस नो योर जैम 972-235-5555। मुझे बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी आ गए हैं बॉलीवुड क्विज के लिए, सो प्लीज जस्ट एन FYI, 9 बजे हमारा एक कमर्शियल ब्रेक होगा, उसके बाद हम खेलेंगे हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज। एक छोटा सा हिंट भी आ जाएगा उसके पहले हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, प्रेम जोशी पॉडकास्ट पे, PREMJOSHI पॉडकास्ट। इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी एंटरटेनिंग, सो मेक श्योर यू ट्यून इन। दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम।

Alright, welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with Prem. जैसा मैंने बताया थोड़ी मिनट पहले कि हमारा बॉलीवुड क्विज होगा 9 बजे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. सो मेक श्योर यू ट्यून इन ऑन 104.9 FM. दिस इज द फन एशिया रेडियो स्टेशन. एंड ऑफ कोर्स हमारे ग्रैंड स्पॉन्सर है द फ्लेवर लाउंज फॉर दिस बॉलीवुड क्विज. सो मेक श्योर यू ट्यून इन एंड यू कैन नोट डाउन दिस नंबर 9722355555. एंड मेक श्योर यू गो ऑन इंस्टाग्राम प्रेम जोशी पॉडकास्ट PREMJOSHI पॉडकास्ट. उस पे हिंट मैंने डाल दिया है हमारे बॉलीवुड क्विज का. ठीक है, सो यू कैन बी एक्चुअली अप फ्रंट ऑफ ऑल द कॉलर्स एज वेल एंड हैव सम फन. राइट,

0: such an amazing song, because this song is not just a song, yaar. This song is an emotion. Tanha Dil by Shaan. Ladies and gentlemen, welcome back. Devio, Sajno, Bhaiyo, Behno. वक्त हो चुका है हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज खेलने का. यस, ड्रम रोल प्लीज. सो दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम. और वैसे हम यूजुअली ये हमारा पॉप क्विज हम 8:30, 8:45 को खेलते हैं, बट यार आज इतनी बारिश और थंडरस्टॉर्म हुई है, सो आई वाज लाइक देयर आर नॉट मेनी पीपल ऑन द रोड ड्यूरिंग 8:30 or 8:45, एंड राइट नाउ इट्स अ थोड़ा सा शांत हुआ है वेदर. आई फील लाइक मोर पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द बॉलीवुड क्विज. तो बहरहाल आप जहाँ पे भी है, कहीं पे भी जा रहे हैं, लोग ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं अपनी वीकली ग्रोसरी रन्स के लिए, पीपल आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर गेट टुगेदर्स, पीपल आर यू नो हेडिंग टूवर्ड्स देयर होम, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फनीशा को सुन रहे हैं, बस वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच. वक्त हो चुका है हमारा बॉलीवुड क्विज खेलने का. तो नंबर नोट कर लीजिए भाइयों और बहनों, 972-235-5555 इज द नंबर. कॉल अस राइट नाउ और हम आपको पूछेंगे 3 सवाल, उसके होंगे 3 आसान जवाब, और जो भी फटफट सही जवाब मुझे दे देगा उसे मिलेगा हमारा गिव अवे फ्रॉम फ्लेवर लाउंज, दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. इट्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, एंड आपको मौका मिलेगा. आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ कॉलर, लेट्स सी. रेडियो का आवाज कम कर दीजिए और आपका आवाज बढ़ा दीजिए. हाय, यू आर लाइव ऑन द एयर.
1: हाय
0: हाय,
1: हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग फैंटाबुलस, हाउ आर यू डूइंग?
1: I'm doing great too.
0: Okay, awesome. ये वेदर में हम ग्रेट और फैंटाबुलस कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, आप और मैं.
1: True, true.
0: All right, तो आपने हमें बॉलीवुड क्विज खेलने के लिए फोन किया है?
1: जी बिल्कुल.
0: Awesome. तो पहले तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हमें कॉल कर रही है?
1: मैं रूबी हूँ और मैं प्लानो से कॉल कर रही हूँ.
0: आपका नाम वापस बताइए.
1: रूबी.
0: रूबी, ऑल राइट रूबी जी फ्रॉम प्लानो. ऑल राइट, आर यू रेडी?
1: Yeah, I'm ready.
0: Okay, fantastic. So, aaj hamara bahut special day, Ruby ji. It's Mother's Day, mm-hmm. right? We're celebrating mm-hmm. the amazing mothers of our DFW.
1: I'm mother of two.
0: Oh, you're mother of two. So, happy, happy Mother's yeah. Day, Ruby ji. How old are your kids?
1: One is 10 and other one is 9.
0: Oh, fantastic. Ekdam amazing, amazing phase of your life. 10 and 9. ओके फैंटास्टिक. सो ये तीनों हमारे जो सवाल है वो हमारे रिलेटेड है टू मदर्स डे. सो हम बॉलीवुड क्विज है हमारा, तो मदर्स डे का थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, ठीक है? तो मॉम के रिलेटेड है हमारा. तो आई थिंक आपको ये आंसर पता ही रहेगा. मुझे आई फील लाइक यू आर अ हिंदी मूवी बफ, इज दैट राइट? तो थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं क्या? थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं कि ईजी रखना है?
1: नहीं नहीं करें आपको जैसा ठीक लगता है.
0: अच्छा, yes, I liked it. All right, चलो तो पहला सवाल इजी रहेगा. ओके, सो राहुल नाम तो आपने सुना होगा. तो राहुल करके कैरेक्टर है कभी खुशी कभी गम मूवी में, ठीक है? आइकॉनिक मूवी. उनके माता जी कौन है इसमें? वो कौन से एक्टर है? जया बच्चन जी, सही जवाब. कांग्रेचुलेशंस. सेकंड क्वेश्चन, श्रीदेवी जी का आइकॉनिक कैरेक्टर है इंग्लिश विंग्लिश करके एक मूवी आई थी, बहुत ही बढ़िया मूवी. ओके, तो वो उस मूवी में श्रीदेवी जी का नाम क्या था?
1: Just slipped out of my mind.
0: ओके, कोई बात नहीं, हम तीसरे सवाल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? ओके, मेरे पास माँ है, बॉलीवुड मूवी है ये, बहुत ही आइकॉनिक. ये मूवी का नाम क्या है?
1: दीवार.
0: कांग्रेचुलेशंस. ऑलराइट, ऑसम. तो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ ये क्वेश्चन का जवाब सोचने के लिए. गूगल वूगल मत कर देना यार, मेरे पास 3-4 और कॉलर है.
1: सोच रही हूँ मुझे पूरी मूवी ध्यान आ रही है, बट
0: यस इंग्लिश विंग्लिश.
1: फर्स्ट अल्फाबेट कुछ बताएंगे क्या?
0: एस. एस इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए.
1: एस एस एस.
0: टिक टिक वन. टिक टिक टिक. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, आप वापस कॉल कीजिए, क्योंकि हमें गारंटी पता नहीं है कि सभी को 3 सवाल के जवाब आएंगे कि नहीं. ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट कॉलर. And if you are able to, you know, recollect that answer, we'll play again. All right? Thank you.
1: All right. Thank you.
0: Hi, this is Funish here.
2: Hi.
0: Hi. Aapka naam bataiye.
2: Mera naam Nayan Patel hai.
0: Nayan ji, kaise ho aap? And have you called us for playing the Bollywood quiz?
2: Yes, sir.
0: Okay, fantastic. So, I think you might have already heard the two questions, so I'm just going to change those questions and I'm going to start from scratch. All right?
2: Sure, yeah. Mm-hmm.
0: Okay, awesome. So, the first question is, Lukka Chupi Bahut Hui. It's an iconic song. Which movie is this song from? लुका छुपी
2: सुना है बट अभी याद नहीं आ रहा है.
0: It's a very iconic song sung by the one and only लता मंगेशकर जी.
2: Yes, yes, yes.
0: ये कौन से मूवी का है? हमारा मदर्स डे का थोड़ा हमारा थीम चल रहा है.
2: Yes, right, right.
0: कोई बात नहीं, अगर आपको वापस कुछ पता चले तो call us again. All right?
2: Sure. Mm-hmm.
0: Okay, fantastic.
3: अपना प्रेम भाई वो वार लगा रहे थे.
0: अच्छा, प्रेम भाई बहुत वार लगा रहे थे अने तमे ऑन एयर बद्दाना समय बोली दीदू. હવે હવે મને તમારો ફોન હવે તમારો ફોન હવે મને ઉપાડવો નથી. કે હેલો, યુ આર લાઈવ ઓન ધી એર. આપકા નામ બતાઈએ.
4: કૃષ્ણા.
0: કૃષ્ણા.
4: યસ, કૃષ્ણા ફ્રોમ બ્લૂન.
0: ઓસમ. કૃષ્ણા, કૃષ્ણા, હાઉ આર યુ?
4: ગુડ, ગુડ, હાઉ આર યુ?
0: એકદમ ફેન્ટાસ્ટિક. ચલો, તો અભી આપને બોલીવુડ ક્વિઝ ખેલને કે લે ફોન કિયા હે?
4: Yes.
0: Okay, fantastic. चलो तो अभी फटफट हम चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो आई होप यू विन दिस वन. ओके,
4: ओके,
0: ऑसम. ऑलराइट, सो हु प्लेड राधा

0: आपने बॉलीवुड क्विज खेलने के लिए फोन किया है?
1: यस
0: ओके, फैंटास्टिक। चलो तो अभी फट फट हम चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू विन दिस वन।
1: ओके
0: ओके,
1: ओके
0: ऑसम। ऑलराइट, सो हु प्लेड राधा इन द आइकॉनिक मदर इंडिया मूवी? ये एक्टर का नाम क्या है?
1: नरगिस
0: अरे एकदम फर्स्ट क्लास कृष्णा जी, एकदम जल्दी में अपनी कृष्णा जी, बहुत जल्दी में फटफट आंसर दे देना है उनको। ओके, तो ये सवाल का जवाब हमारे जो प्रीवियस कॉलर है उन्होंने नहीं दिया था, तो मैं आपको पूछ लेता हूं क्योंकि जवाब हमने किसी को पता नहीं अभी तक। सो व्हाट वाज श्रीदेवी कैरेक्टर नेम इन इंग्लिश विंग्लिश? इंग्लिश विंग्लिश करके मूवी आई थी श्रीदेवी।
1: शशि
0: आप हमें
1: शशि
0: पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं?
1: बता रही हूँ शशि।
0: यस यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट। यार मुझे ऐसा लग रहा है आप ही लेके जाने वाले हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं क्या?
1: नहीं, थोड़ा थोड़ा आसान रखिए, जीतना है मुझे।
0: अच्छा, ओके ठीक है, चलो। ओके फैंटास्टिक, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, लुका छुपी करके गाना था लता मंगेशकर जी का, बहुत ही फेमस आइकॉनिक सॉन्ग जिसमें आमिर खान एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं। ओके, ये कौन से मूवी का है? ये
1: रंग दे बसंती।
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा, यू आर द विनर ऑफ दिस वीक्स बॉलीवुड क्विज। अभी आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर जाएंगे ना तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। ओ माय गॉड, आर यू कृष्णा द हु वन एट प्रेम शो?
1: होपफुली
0: ओके फैंटास्टिक, तो चलो आप ऑनलाइन रीज रहिए, आपके मैं डिटेल्स लूंगा ऑफ एयर और हम एक गाना बजा देंगे हमारे सब लिसनर्स के लिए। ठीक है,
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट।
1: What's up?

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. मैंने जितना हो सके कॉल्स उठाने की कोशिश की. वी गॉट सम अमेजिंग कॉलर्स. थैंक यू सो टू एवरीबॉडी हु ट्राइड टू यू नो कॉल अस, प्ले द बॉलीवुड क्विज विद अस. दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग अमेजिंग स्पॉन्सर्स जो हर हफ्ते बदलते रहते हैं. बट इस बार के हमारे जो स्पॉन्सर है वॉज द फ्लेवर लाउंज. इट्स लोकेटेड ऑन Preston Road in Frisco, and it's an amazing restaurant. If you haven't tried, it's one of the new restaurants that they have opened up, and I really, really like the food and the ambience. So do check them out, the Flavor Lounge. And ghabraiye mat, hatash mat hoiye, naraz mat hoiye, kyunki ye hum har hafte khelte. So make sure you tune in on 104.9 FM on every Sunday from 8 p.m. to 10 p.m., and we will give you the opportunity to play with us, to talk with us, to have some amazing time with us. All right, next gana hame recommend kiya hai Anika ne, Kayamat karke ek song hai from Household Movie. Have a listen, ladies and gentlemen.

0: you turned down that job to become a diving instructor?
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: Did you know Bawarchi Biryanis is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50 plus locations across the country, Bawarchi Biryanis makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
4: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
7: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
6: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
7: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
8: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
9: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनीशिया पे
10: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Yeah! Abhi baja aega na bhiro.
5: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe!
6: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
2: Abhi baja aega na bhiro.
3: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe.
6: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
2: Yeah abhi baja aayega na bhido
3: apun bole to full Bollywood dhamaka Fun Asia pe
4: Hi this is Rani Mukherjee you're listening to Fun Asia Radio
5: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
6: I love it.
5: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: तो रुको जरा, सबर करो।
5: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
6: क्या तमाशा दिन में खुदा सा है,
7: जिद होती तो बाहों में होती।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा, वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अश्वथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन, शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: 104.9 FM funny show.
1: Funny show.
0: Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

खुद सीज कर लूं। एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं। उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
3: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

0: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।
1: आकर
2: ओह शिट,

0: आओ आओ आओ आओ आओ
1: मसकली आओ आओ मसकली आओ आओ आओ आ

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूं।

Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor. And you're listening to...
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath, world famous astrologer, ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
11: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
12: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
11: रोज का सेम प्रॉब्लम.
13: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
14: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
1: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया. गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
15: सब कुछ साफ रख सकते हो
16: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
17: क्योंकि ये कौन बोला?
16: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
18: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
19: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
20: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
21: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's go ahead and get this week started. It's a lovely Monday morning, the 11th of May. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chaand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko insaniyat को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद दिस वीक.

0: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
1: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
0: K2 ड्राइव मतलब
1: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
0: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
1: 100%
2: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
3: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
4: क्या?
3: सैलरी बंद हो जाती है
4: और बिल्स बंद नहीं होते।
3: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
4: मतलब
3: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
5: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
12: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
11: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
12: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
13: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
14: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
13: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
9: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
8: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
9: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
8: कैसे?
9: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
8: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
9: या कैरेट लेन काइंड.
10: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Babaji Biryanis in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Babaji Plano or visit babajiplano.com.
16: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
17: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
18: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
17: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
18: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
10: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
19: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
7: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
0: Let's go ahead and get started with this hour of the program. If you are just joining us, please do receive my very warm welcome to the show this morning.

0: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
0: अमरीन सैलून, स्टाइल दैट मूव्स विद यू।
2: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
3: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
4: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
6: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
7: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट taxi@5200 Memorial Drive, Colony, Texas।
8: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, अगर ना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: Yeah! Abhi baja aayega na bhido.
3: Apun bole to full Bollywood dhamaka finish up.
4: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: For those of you who would like to reach me directly, 214-675-1754 for advertising on the Fun Asia Network, or any other questions you may have about that, you can reach me.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
4: सब कुछ साफ रख सकते हो
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
11: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
10: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
11: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
18: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
9: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
18: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
9: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
19: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org। पॉज द नॉइज, meet yourself.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विद मी टू। ए बिग थैंक यू टू शबनम जी फॉर एन अमेजिंग अमेजिंग शो दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। हर हफ्ते की शुरुआत होती है शबनम जी से, महीने की शुरुआत होती है शबनम जी से और साल की भी। और यही जो एंटरटेनमेंट का सिलसिला 24/7 आपको पूरे साल मिलता है ऑन फनीजिया रेडियो 104.9 FM। यहां से मेरी शुरुआत होती है और आपके साथ आई विल बी हियर 12:30, ladies and gentlemen, घड़ी मिला लीजिए, it is 9 past 10 by the studio clock, और आज की तारीख है 11th of May, it is 131st day of this year, और ये आपको बताता है कि हम 20th week पे हैं अपने। Can you believe that? This is Gapshap Gali with me too.

इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन गपशप गली विथ मी टू। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ इस इवेंट के बारे में जो इसी हफ्ते होने वाला है। 14th ऑफ मे इज व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट, व्हिच टेल्स यू दैट इट इज दिस थर्सडे व्हेन इट स्टार्ट्स। और 3 दिन का ये इमर्सिव जर्नी जो आप ले सकते हैं विथ द एक्सपर्ट्स देयर, एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स हु विल गिव यू दैट पावरफुल टूल ऑफ मेडिटेशन, एंड दैट इटसेल्फ ब्रिंग्स लॉट ऑफ यू नो काम इन योर माइंड। जो एक कभी होता ना कि इमोशनल ब्लॉक्स हैं अगर आपके, या कुछ कुछ स्ट्रेस जो आपकी ज़िंदगी में है, और वो स्लो डाउन का जो एक बहाना आप सोच रहे होते हो कि कैसे कब क्या, ये वो मौका है 14th मई से लेकर 17th ऑफ मई, व्हेन यू कैन रीकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, एंड दैट्स ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़रूर रजिस्टर कर लें oshoyuniversal.org पे जाके, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज स्लो डाउन ए बिट। ये वही मौका है आप सबके लिए। वंस अगेन 14th मई टू 17th मई, डू रिमेंबर टू चेक आउट द वेबसाइट oshoyuniversal.org। You are tuned into Gupshup Gali with me too, all the way till 12:30.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
3: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
3: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
4: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
5: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह answers ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। Connect with Anita Chundru at The Colony, Texas. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
2: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी @ 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सास।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 4693627755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
2: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, ringing the community together. और इस वक्त हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं मिस्टर हुसैन पंचवानी फ्रॉम ड्रीम होम मोर्टगेज. एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ आर स्टोरी, आर लाइफ स्टोरी, कि जहां हमें थोड़ी ना प्रोफेशनल हेल्प की जो जरूरत होती है उससे कई बार हम ना इतने नर्वस हो जाते हैं कि हम आगे बात ही नहीं ले जाते हैं. एंड दिस इज अबाउट यू नो रियल एस्टेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या घर खरीदना हो आपको, आपका प्राइमरी घर हो या वट एवर इट इज, समटाइम्स ऑल दैट गोज विद द इंटरेस्ट रेट, द मॉर्गेज एंड एवरीथिंग, वो हमें नर्वस कर देता है और ये हमारा प्लान ना पीछे चला जाता है. ऐसे में ड्रीम होम मॉर्गेज जैसे प्रोफेशनल्स के साथ आप जुड़ें एंड फाइंड आउट योर ऑप्शंस बिफोर यू साइन ऑफ एब्सोल्युटली एंड कम्प्लीटली. सो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, dreamhomemortgage.com इज द वेबसाइट एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम सिंस 1998. और बहुत अच्छा खासा इनका जो ये नाम है, दैट इज वॉट हैज टेकन देम सो फार एंड विल कंटिन्यू to do so, because you can just go and find out their reviews and they have been stupendous in that. With that, Hussain sahab ka pehle welcome kar lete hain aur uske baad unse bahut sari jo tips and advices milti hain wo thoda sa jaan lete hain. You are live on air, Hussain sahab. Thank you so much for finding time for us every Monday at 10:30.
1: Good morning, Amintu ji. Good morning to all your listeners. In fact, I look forward to talking to you and your listeners. एकदम फ्रेश होते हैं वीकेंड से, क्या प्लान्स हो रहा है, हाउ वाज द वीकेंड,
0: यस
1: एंड यू नो
0: या ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर जो आप लेकर आते हो उसके लिए सीरियसली थैंक यू सो मच हुसैन साहब. वी नो हाउ बिजी यू आर. तो मैं ना लेट्स गेट टू द बिजनेस ऑफ आस्किंग यू क्वेश्चन सो दैट हमारे लिसनर्स को सारे टिप्स एंड एडवाइस जो इस सेगमेंट में मिलता है वो मिलता रहे उनको, है ना.
1: हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर लिस्टर जब भी घर बाय करने के लिए सोचे
0: जी.
1: वो रेडी हो जाए कि नाउ वी आर रेडी टू मेक दैट मूव.
0: यस एब्सोल्युटली एंड ट्रस्ट मी यू बीन हेल्पिंग मेनी और इस सेगमेंट का यही इंटेंशन है. तो हुसैन साहब, हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है ना, हम में से कई लोग जो हैं वो आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स भी हैं. तो ऐसे में जो ये 1099 के जो वर्कर्स हैं यू नो, इनका इनकम शो करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. तो आप बता सकते हैं कि ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या बिजनेस ओनर्स, इनके लिए लोन लेना कितना मुश्किल या आसान है, यू नो, व्हाट आर द ऑप्शंस दे हैव.
1: मिठू जी, 1099 इज वेरी कॉमन, रिसीविंग अ 1099 इज वेरी कॉमन इन वेदर इफ यू आर इन अ इफ यू आर अ रियल्टर, इफ यू आर इन कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस. कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत कॉमन है एंड ट्रकिंग बिजनेस में बहुत से हम ट्रकर्स को देखते हैं कि दे रिसीव 1099. सो देयर एक्चुअल इनकम ऑन देयर टैक्स रिटर्न एंड देयर एक्चुअल इनकम दोनों मैच नहीं होते, विच इज वेरी कॉमन बिकॉज द लॉ अलाउज यू कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलना होता है. तो हम ये इन दिस केसेस वी आर एबल टू हेल्प देम विद, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट देयर टैक्स रिटर्न, we completely disregard their tax returns and qualify based on their either the 1099 profit and loss statement or deposits made in the bank statements. So hamare paas kafi different programs hai where we can help you to qualify, especially when you are self-employed and receiving any kind of self-employment income. 1099 hai jaisa aap, even if you don't receive 1099, you are receiving direct deposits in your bank, we can help you.
0: So there are so many options for them, they should know about. You know, कई बार तो लोग कतरा जाते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हंगामा है, वो सोच के ही वो पीछे हट जाते हैं. तो दैट इज वेयर यू ऑल कम इन, द प्रोफेशनल्स एट ड्रीम होम मॉर्गेज कम इन एंड वी वॉन्ट यू ऑल टू गेट इन टच विद देम. और सीधा सिंपल सा रास्ता है, गिव दम अ कॉल 972-245-5626, dreamhomemortgage.com पे जाकर आपको सारी इनकी जो सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड यू विल गेट दैट. एंड मेरा हमेशा हमारे लिसनर्स को ये होता है कि वेबसाइट हम जरूर शेयर करते हैं, यू गो थ्रू द वेबसाइट बट डेफिनेटली गिव देम अ कॉल. इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो फर्स्ट हैंड कि किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं.
1: एंड द ब्यूटी इज यू नो वी ऑल लव दैट, वी ऑल लव टू यूज द वर्ड फ्री. द कंसल्टेशन हम हमारी ड्रीम होम पे एब्सोल्युटली फ्री है. वी हेल्प आवर बोरोवर्स, वी पुल देयर क्रेडिट व्हेन दे आर रेडी. यू नो वी हैव क्लाइंट्स नाउ राइट नाउ एज वी स्पीक from Wisconsin where they have issues with the credit. So hum koshish kar rahe hain ki unki credit build karne ka, it's going to take time. So we told the borrower do this, do that, and hopefully within the next 45 days, we'll see your score coming up. And then you'll be able to buy a house just with 3% down or 3.5% down. So she was really excited, Kim. So a lot of, you know, we try ke jab tak, once you are comfortable working with us, we make 100% sure that once you are comfortable making that move, we guide you throughout the process and we hold your hand till you are into your dream home.
0: तो हुसैन साहब, आप अभी क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे थे. लेट्स टॉक अबाउट दैट मैजिक नंबर, द क्रेडिट स्कोर. यू नो, हर कोई 800 की रेस में भागे जा रहा है, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मॉर्गेज रेट्स के लिए एक गुड इनफ क्रेडिट स्कोर क्या होता है?
1: अभी जैसा आपने कहा कि गुड इनफ क्रेडिट स्कोर, सो इट कैन बी एज लो एज 580 and then sky is the limit. FHA loan mein aapko 580 score chahiye.
0: Jee.
1: Now there is a program where Fannie Mae, Freddie Mac does not need any credit score. Wo hum abhi tak bahut se lender ne us pe pick up nahi kiya hai kyunki us pe mortgage insurance bahut zyada high hota hai. So we have not seen that yet. But there are programs jahan wo log abhi last year hi release hua that they don't require credit score. But to be for all practical purposes, FHA mein 580 credit score chahiye, conventional mein 620 score chahiye. And especially on conventional loans, jahan aapke rates get better when you have higher credit score. So 780 is the top tier, and every 20 points you drop a tier.
0: Achha.
1: So 780 would be the top tier, 700 would be the fifth tier.
0: Achha.
1: So pehle kya tha ek zamane mein, 700 was like the top score. Now it's 780.
0: I see.
1: So the interest rate might differ by almost 0.5% if a borrower has a 700 score and 780 score, regardless of their down payment, unless they're putting a huge down payment. So let me stand corrected. But if you're putting 20-25% down and your score is 700 compared to 780, someone putting 5% down having a 780 credit score will get a much better interest rate. And someone putting 25% down and having a credit score of 700 or 680. So credit is very important when we talk about conventional loans.
0: Okay.
1: FHA loan, mein, yes, up to 640, you'll almost get the same rates. Then 600 to 640 is in the same bracket, and then 580 is a different bracket.
0: Got it. और मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई वाकई में एक खराब क्रेडिट स्कोर के साथ आपके पास आए, तो डू यू लाइक हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट रिपेयर प्रोसेस या कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस आपके होते हैं उनके लिए?
1: अभी जहां हमारे पास बहुत से लोग ओवर 28 इयर्स आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जहां क्रेडिट स्कोर बहुत खराब थे. And like I said, अभी हम एक क्लाइंट से बात कर रहे हैं विस्कॉन्सिन में, जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है. एंड वी जस्ट वी टोल्ड हर, ओके, यू नीड टू पे दिस ऑफ, डू नॉट क्लोज एनी क्रेडिट कार्ड ऑफ. शी इज ट्राइंग टू गेट मनी, सम मनी सेव्ड अप सो शी कैन पे ऑफ अ कार. बट वी टोल्ड हर, डोंट पे ऑफ द कार टिल वी पुल योर क्रेडिट एंड यू आर रेडी टू मेक दैट मूव.
0: Okay.
1: Because when you pay off your car, instantly your scores drop, unfortunately.
0: Correct.
1: So that's the way the credit system works. So we, like you said, jiska credit kharab hota hai, hum unko guide karte hai. You know, I've given this example on Financial Radio so many times, where we had a borrower, we worked with them for almost a year and a half from Houston, jinka score in the low 500s tha. And we worked with them for almost a year and a half. Got it to around 640, and again, same thing. We're able to get him in FHA loan with just 3.5% out.
0: That's amazing. That's a huge jump that you just talked about. So it is very much possible. It may take time depending on the case, but it is 100% possible. And that is why we want our listeners to know ki there are many options. Aapko bas connect karna hai aur janna hai ki aapke liye kya sahi hai, that you want to give them advice for, right?
1: So, definitely. And bahut se logo lagta hai ki jab hi hamara score, you know, 580 या 600 FHA में हम जाते हैं, तो रेट माइट बी लाइक 1% 1.5% हायर. ऐसा नहीं है. इट माइट बी प्रॉब्ली 0.5% हायर, 0.75% हायर, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट लाइक रिडिकुलसली हायर रेट, एंड यू हैव टू पुट लॉट ऑफ डाउन पेमेंट एंड एक्स्ट्रा क्लोजिंग कॉस्ट. द ओनली प्रोग्राम है क्लोजिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है वो जो पोर्टफोलियो लोन है, जहां बैंक स्टेटमेंट लोन है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, जहां हम नो डॉक लोन में जाते हैं. वहाँ थोड़ा आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है.
0: सर एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलवेज कम अप विद. वी हैव एक्जैक्टली 5 seconds लेफ्ट ऑन द क्लॉक और ये मैं यूज करना चाहती हूँ टू थैंक यू सो मच हुसैन साहब.
2: You turned down that job to become a diving instructor?
3: Yeah, I thought Ma would say no.
2: And?
3: She said, build your life the way you dream it.
4: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
5: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
6: Drive a BMW, Mercedes, or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top-tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works. Engineered for excellence.
7: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
8: प्लान या होप?
7: मतलब?
8: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
7: ओके, तो मेरा वाला होप है.
8: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक से बात करते हैं.
7: क्यों?
8: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
9: वेल्थ टैक्टिक रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
10: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपर हिट.
12: माय टाइम इक्विटी अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट Advisory firm owned by CPA Sudhir Pai offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
14: So, ruko jara, sabar karo.
15: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Phoneshia.

आई होप यू हैड अ कमाल का मदर्स डे, और जिनको विशेस पहुंचानी थी पहुंच गई हैं, आपको सेलिब्रेट करना था आपने कर लिया. एंड हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबॉडी हु सेलिब्रेटेड इट ब्यूटिफुली. और हमारा जो ये मदर्स डे था, इट वाज क्वाइट वेट एंड काफ़ी बारिश हुई है. कुछ जगहों पे तो 3 इंच बारिश भी मिली है कुछ जगहों को. बट आज लेटर टुडे यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सनशाइन, लेडीज एंड जेंटलमैन. द बिलो एवरेज टेम्परेचर्स आर शॉर्ट लिव्ड जो आप देखने वाले हो आज. कुछ हाईज इन द 70s दैट यू गोइंग टू सी, अपर 70s दैट यू गोइंग टू सी, एंड दैट इज गोइंग टू क्लाइम बैक अबव एवरेज ऑन ट्यूजडे, दैट इज टमोरो. देन दी 90s रिटर्न ऑन वेंसडे, क्योंकि कल हमारा 80s में होगा, फिर 90s में जाने वाले हैं. ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी थ्रू आउट द वीक, बट द वर्क वीक रिमेन्स ड्राई फॉर ऑल ऑफ अस. द नेक्स्ट चांस फॉर स्कैटर्ड आफ्टरनून स्टॉर्म्स रिटर्न ऑन सैटरडे, लेडीज एंड जेंटलमैन. और तब हमारा शायद सिवियर वेदर के जो चांसेस हैं, वी विल मेक श्योर दैट वी कीप यू पोस्टेड ऑन दैट, क्योंकि वी हैव एन एंटायर वीक फॉर द वेदर टू टेक शेप, एंड वील मेक श्योर दैट वी टेल यू दैट एग्जैक्टली when it is required. And hum batana jaate 65 right now the temperature is, and the temperature at the box office is still high with Dhurandhar 2 the revenge. Lekin ye aapke chote parde par, yani ki TV par aane wala hai, Netflix pe this week. Outside India on Netflix and in India on Jio Hotstar.

An absolute masterpiece of a song that I find this one. बहुत सारे जो गाने इस फिल्म के पॉपुलर हुए धुरंधर 2 के, जिसमें से ये मुझे ना सबसे ज़्यादा हार्ट फेल्ट लगा. अरिजीत सिंह की आवाज़ थी और ऑफ कोर्स इरशाद कामिल के बोल थे. ये अगला गाना भी ना, इट्स हैज दैट इफेक्ट ऑफ टेकिंग यू टू अ डिफरेंट जोन. तीन गवाह, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था ये गाना, गुलजार साहब का लिखा हुआ, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक बाय द वे. बट कुछ तो है बात इस गाने में, जस्ट लिसन टू इट एंड सी इफ यू लाइक इट एज वेल.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Have you suffered serious injuries in an accident? Perhaps you need help with immigration, detention, or criminal defense issues. Maybe you're just having a hard time dealing with divorce, custody, or child support battle. Everybody has problems, but the Mathur Legal Team has the solution.
3: Mathur Law Offices, a professional law firm whose attorneys are dedicated to solving cases with multiple legal issues with unmatched success. Call today for consultation. 214-378-8880. 214-378-8880. That's 378-8880.
4: Mathur Law Offices, the might for the fight.
5: चिकन बनाना
6: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
9: Dur rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi Louisville, Dallas ka sabse bada desi grocery store, jahan har desi ek roof ke niche. North se south, street se festive, har taste, har culture, ek hi jagah. Pure desi, full mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
10: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
11: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
10: रोज का सेम प्रॉब्लम.
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
14: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
7: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
15: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
16: आज जी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
17: रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
18: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
17: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
18: वेट व्हाट?
19: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
20: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
19: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
21: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM और हमारी तो भाई गपशप ऐसी है कि चलती रहती है, लेकिन इस सेगमेंट में गपशप होगी मंडे के बारे में। यार मंडे के बारे में क्या, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मंडे के बारे में कुछ ऐसी चीजें विच कैन मेक योर मंडेज अ लिटिल बेटर देन यू थिंक दे आर। यार डोंट डीमोनाइज मंडे, यार मंडे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है। This is Gapshap Gali with me too.

एंड दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन कुनाल गांजावाला, जिनकी आवाज़ मुझे बेहतरीन लगती है और इनकी आवाज़ आजकल नहीं मिलती है हमें गानों में, हमारे बॉलीवुड के गानों में या इवन इंडिपेंडेंट म्यूजिक. आई एम नॉट श्योर इफ इज क्रिएटिंग एनी, बट ही शुड बिकॉज हिज वॉइस इज डिफरेंट एंड दिस डे इट इज वेरी डिफरेंट. यार हम मंडे को डीमोनाइज करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए. करना अगर किसी को चाहिए तो वो हम है. वी आर द रीजन दैट बिकम दैट मेक्स यू नो मंडे द मॉन्स्टर ऑफ द वीक. वेल, मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो जिससे आपका ना मंडे थोड़ा सा बेटर स्टार्ट हो सकता है. अब ये क्या स्टेप्स हैं ये बताने वाली हूँ आपको अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि उसके पहले जो स्टेप आपको लेना है इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड टू योर स्टोरीज, स्पेशल स्टोरीज, इट इज़ द ज्वेलरी फ्रॉम श्री कृष्णा. क्योंकि इनके हर ज्वेलरी में एक कहानी छिपी होती है और वो कहानी जो आपके साथ जुड़ सकती है और ज़रूर अपने स्पेशल मोमेंट को थोड़ा सा और स्पेशल बना सकती है. तो जरूर याद रखें, आप गोल्ड हो या डायमंड हो या उनकी जो एक्सक्विजिट कुंदन और पोल की ज्वेलरी है, आपको मिल सकता है एट देयर फ्रिस्को लोकेशन 13145 सुइट 220 इन मेन स्ट्रीट. And it is Frisco that we are talking about. Do remember, crafting creation since 1967. Monday blues ko hatane ki kya tarike hai wo batane wali hu lekin is gaane ke baad. This is Gupshup Gali with me too.

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
2: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
1: कैसे?
2: Page 3 eatery?
1: No, not another restaurant again.
2: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
3: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
4: Hello, accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
10: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
10: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
11: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको, जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क लालो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
13: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

अपनी दीवानगी में जो ये फाइनेंशियल जो कभी कभी स्ट्रेस आता है हमारे लिए, कि या तो फाइनेंशियल एक जो राउट हम सीख करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो विथ माई टाइम एक्विटी. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेड बाय सीपीए सुधीर पाए, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेकर रियल एस्टेट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का सीधा सीधा रास्ता दिखाते हैं. फाइनेंशियल गाइडेंस जो एक बेहतरीन लेकर आते हैं, इट इज़ माई टाइम एक्विटी .com. That's where you will get all the information and get in touch with Mr. CPS Sudhir Pai. Ya phir unki team ke saath aap jude 4697021272. Seedhi cheezon ka raasta seedha jata hai. Aur professional agar help le lete na, to wo seedha raasta aasan bhi ho jata hai. Yaad rakhega, this is Fun Asia Radio 104.9 FM. Jahan seedha raasta hota hai to music, entertainment and much, much more. Us much more mein main add karne वाली हूं कि आपके जो मंडे मोमेंटम जो है वो लाने की पूरी कोशिश कर रही हूं. क्या है ना कि हम थोड़ा सा वीकली ट्यूनअप की जरूरत होती है मंडे को. मंडे को हमने इतना डीमनाइज करके रखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि मंडे को हम बख्श दें यार, मंडे जिए और हम भी जिए. हाउ अबाउट दैट, यू नो. तो ये कुछ आपका जो दिमाग अभी थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है आफ्टर द वीकेंड केओस, जो वीकेंड का जो वो घर पे जो केओस है वो अलग बात है. एंड फिर जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके आसपास जो सारा कुछ कॉफी मग से लेकर वो लॉन्ड्री जो उन्हें दिख रहा है और वो जो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना, बस उसी से हम आपको थोड़ा सा दूर लेकर जाना चाहते हैं. बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू एब्सोल्यूटली स्ट्रेस फ्री मूड एंड होम रीसेट के लिए, जो कि आपके लिए बहुत काम आ सकता है मंडे को. तो कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ जो मुझे पता चली हैं, मैंने सोचा यार वाई नॉट शेयर इट विथ एवरीबॉडी एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू आर मंडेज. ठीक है, तो एक जो पहला स्टेप है आप जो कर सकते हो वो है 15 मिनट का फेक क्लीनिंग. डिटेल या डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है. वो जो आपके काउंटर टॉप्स पे, आपके टेबल्स पे जो ये बिखरा पड़ा हुआ है सामान ना, उस सामान को समेट ले. ठीक है, अपने डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा साफ कर लें, यू नो, डेस्क को, आपके स्टडी डेस्क को, वो सारा क्लटर आप थोड़ा सा साफ कर लें. और विजुअली क्लियर सर्फेसिस गिव योर ब्रेन एन इंस्टेंट सिग्नल दैट एवरीथिंग इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल. इसे कहते हैं फेक सफाई. ये फेक सफाई आपके लिए बहुत बहुत काम का हो सकता है, ज़रूर कीजिएगा. ऑलराइट, एंड देन दैट अरोमा शिप दैट वन मस्ट डू. अब जब ये एक फेक सफाई आपने कर ली, उसके बाद आप लाइट करो कैंडल या फिर रूम फ्रेशनर यूज़ करो. मैं तो यार मैं कैंडल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो आई डू लाइट अप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैंडल्स एट माई होम. आई डू इट यूजली आफ्टर यू नो इफ समबडी इज़ कमिंग या आफ्टर आई हैव क्लीनड अप माई होम. सो येस, इट रियली हेल्प, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, लैवेंडर जो कि स्ट्रेस रिलीफ करता है, सिट्रस जो कि आपको एनर्जी देता है, वनीला जो कि वो कंफर्ट देता है, यूकेलिप्टस जो जिसमें फ्रेग्रेंस है ना वो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है अपेरेंटली. जस्ट यूज इट एंड सी हाउ इट फील्स, क्योंकि ये जो एक खुशबू आने लगे ना, तो वो जो फेक सफाई आपने की है ना उस पर चार चांद लग जाते हैं, सीरियसली. एक और आपको रास्ता बताने वाली हूँ वॉट टू डू ऑन मंडे टू मेक यू फील बेटर ऑन मंडे. सिंपल सी बात है यार, लेट्स नॉट डीमनाइज मंडे. सीधी सी बात है, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि ना मंडे थोड़ा सा आसान हो सकता है. बस वही बता रही हूँ आपको यहाँ पर. दिस इज गपशप गली विद मी टू

90s का ये गाना सलमान खान उर्मिला मटोंडकर का, रिटन बाय मजरू साहब। जी हाँ, 90s का ये गाना जिसमें इट हैड द फ्लेवर ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम द 80s। वही हेलीकॉप्टर से मनाने वाली बात हीरोइन को, और कुछ म्यूजिक, कुछ मनाने वाला जो एस्पेक्ट ना एक और गाने में मिलता है, जो कि मजरू साहब ने लिखा और गाया किशोर कुमार ने। 87 का वो गाना मैं आप लोगों के लिए इसके बाद लगाना चाह रही हूँ। पता है मेरे दिमाग में दो गाने आए इसके तुरंत बाद लगाने का। एक तो जो मैं प्ले करने वाली हूँ आरडी बर्मन के म्यूजिक में, विच स्टार्स मीनाक्षी सेशाद्री एंड संजय दत्त, एंड द अदर वन इज चांदनी। इतनी बार चांदनी सुनने के बाद चांदनी भी मुझे लगा कि कैन बी अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले राइट आफ्टर दिस। फिर मैंने सोचा ये कि वो, फिर मैंने सोचा कि यार ये या वो क्यों, ये और साथ में वो क्यों नहीं, क्योंकि दिस इज गपशप गली विथ मी टू, आई एम द होस्ट, आई पॉसिबली कैन प्ले बोथ द सॉन्ग्स फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट्स कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट। लेकिन वॉट एल्स इज कमिंग अप, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू मैंशन हियर। तो मैंने बताया ना आपको कि मंडे को डीमोनाइज करने से अच्छा है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर लें आप अपने दिन के साथ, एंड यू सी कि मंडे एंड द रेस्ट ऑफ द वीक विल लुक सो फैंटेस्टिक फॉर यू। क्लीनिंग, फेक क्लीनिंग की जो बात करी थी, क्योंकि क्या है ना कि मंडे आते आते ना अगर आपके घर की क्लीनिंग नहीं हो पाई है तो वो क्लटर कैन रियली क्लटर अप योर माइंड, और उसे थोड़ा सा साफ करना जरूरी है। और इसीलिए एक फेक क्लीनिंग कर लो, वो 15 मिनट वाली क्लीनिंग, की जो सारे काउंटर टॉप्स, टेबल्स, डेस्क टॉप्स, वो सारा आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद कुछ अच्छे एरोमेटिक कैंडल्स आपने लगा ली, या कुछ तरह एक अच्छा रूम फ्रेशनर आपने कुछ यूज़ कर लिया, तो यू आर सेट। अगर घर साफ होता है ना तो दिमाग भी काफ़ी साफ होता है, और उस साफ दिमाग के बाद फिर एक ब्रेन डंप करें, ठीक है। व्हाट इज ब्रेन डंप, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि भाई वो जो एक स्टिकी नोट होता है ना उसका एक पन्ना निकालें और उस पर अपनी सबसे जो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें हैं ना वो उस पर लिख लें, और उसके बाद फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आज आपके सबसे इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स क्या हैं, स्टार्ट राइटिंग देम एंड देन मार्क इट ऑफ, ओके। वो जब करते हो ना तो जो वो काम पूरा होने का जो एक जो खुशी होती है ना, दैट एक्चुअली सो ग्रेट, एंड इट सीप्स इनटू द रेस्ट ऑफ द वीक आल्सो। सीरियसली कह रही हूँ, बहुत अच्छा प्लान है, इस प्लान को फॉलो करें और अपने मंडे को मज़े से जिए। Now onwards, you are listening to Gapshap Gali with me too. Some weekly tune-ups that I'm going to bring for all of you in this segment that will happen every Monday for all of you.

एंड दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, सो 80s एंड 90s का गाना. अगर आपने इसका पिक्चराइजेशन है ना देखा है तो ही आप समझ पाएंगे. वो हेलीकॉप्टर पे हीरोइन को मनाने जाना एंड ऑल ऑफ दैट. आई सॉर्ट ऑफ मिस दोज डेज. बट एनी वेज, वी ऑलवेज हैव दीज सॉन्ग्स टू एंजॉय विच वी विल डेफिनेटली प्ले फॉर यू व्हेन एवर यू विश टू लिसन टू. यानी कि आपके रिक्वेस्ट और डेडिकेशन के लिए हमेशा हमारे लाइन्स खुले होते हैं. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. फिलहाल जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए भी हमारे स्टूडियो का जो लाइन है हमेशा खुला रहता है. इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन विच यू कुडंट पेन डाउन और रिमेंबर, एंड दैट इज़ टू डू विद अटर्नी ओमर ख्वाजा, क्योंकि ये वो नंबर है कि मैं आपके साथ शेयर करते रहना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट कभी बता के तो नहीं आता, और जब आता है तो परेशान करके जाता है. लेकिन अगर आप किसी भी लेट्स से वर्क प्लेस इंजरी या फिर स्लिप एंड फॉल केस अगर कुछ हुआ या कुछ कार एक्सीडेंट ट्रक एक्सीडेंट हुआ और आपको लगता है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए फॉर दैट, यू मस्ट गेट इन टच विद अटर्नी ओमर ख्वाजा 4693005046. एंड आई ऑलवेज टेल दिस, डू इट राइट एट द बिगनिंग सो दैट दे कैन हेल्प यू एट द मैक्सिमम लेवल. और ये करने के लिए आपको तुरंत उनके साथ यू नो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. 4693005046 इज दैट नंबर. द बिगेस्ट प्रॉमिस दैट एनीबडी कैन कम अप विद is what they give to you, that promise of not paying until you win. That means until you get your compensation. इससे ज़्यादा और इससे बेहतर promise कौन ही लेकर आ सकता है. तो ज़रूर याद रखिएगा, ladies and gentlemen, attorneyomar.com is the website.

0: एक गाने से दो गानों की याद आ गई और जो मैंने बैक टू बैक आप लोगों के लिए प्ले किया, एंड दैट इज व्हाट यू गेट एब्सोल्युटली फ्री हियर, एंड दैट इज म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन. अब अगर मैं आपको कहूँ कि देसी मंडी जो कि बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे आपको बढ़िया ग्रोसरी पे डील्स तो मिलते हैं, लेकिन गेस व्हाट, मंडे से वेंसडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस, और ट्यूजडे और थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स. This is for all of you from 5 PM to 9 PM at Desi Mandi in Louisville.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
13: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
12: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
14: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
15: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
17: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.
19: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
20: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
21: I was totally worth it, okay?
20: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: Come on, Chunky, now it's your turn. Come on, get up. Tell us.
1: Yeah, sing.
2: हाँ, please बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं.
3: आगे.

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नीयत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ!
0: लिपट गई आके नशे में,

एंड दैट वॉज फ्रॉम मेट्रो इन दिनों, जो कि अनुराग बासु की फिल्म थी, मल्टी स्टारर थी, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फिल्म, जो कि रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, राइट? और इसमें बहुत सारे जो मल्टी स्टारर, मैंने जो कहा ना कि उनके नाम लेने लगूँ तो देर हो जाएगी, तो लेट्स गो टू द मूवी जो इसके पहले आई थी. अनुराग बासु और प्रीतम की वो जो एक अमेजिंग जोड़ी है, वेयर वन टेक्स केयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म, ही इज द फिल्म मेकर, दैट्स अनुराग बासु, लेडीज एंड जेंटलमैन. और दूसरी तरफ प्रीतम जो म्यूजिक का पूरा ऐसा ख्याल रखते हैं कि म्यूजिक एंड डायरेक्शन मिला के जो इनकी फिल्म बनती है ना, इट इज एब्सोल्युटली एज इफ मेड फॉर ईच अदर. सो यस, प्रीतम की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एल्बम फॉर एनी फिल्म दैट इट देर हैज बीन, इट इज लाइफ इन अ मेट्रो. एंड गेस व्हाट, लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज हुई थी आज के दिन इन द ईयर 2007. तो क्या कहते हैं, मौका भी है और दस्तूर भी. दिस इज गपशप गली विद मी टू. इसके बाद ना आप लोगों के लिए एक सवाल आ रहा है, सो गेट रेडी विद द नंबर इन द स्टूडियोज, बिकॉज कपल ऑफ गिव अवेज कमिंग योर वे.

0: आज ही के दिन लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज हुई थी 11th of May 2007. लेकिन हाउ अबाउट कमिंग बैक टू 11th of May टुडेस डे एंड द ईयर 2026. हमारी बातचीत होने वाली है मिस्टर दीप से फ्रॉम जीनू क्रेडिट रिपेयर. और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यू नो हमारे यहाँ पे US में एक जो हमारे लाइफ है उसमें एक चीज़ जो हमारे हमेशा पीछे पड़ी रहती है एक शैडो की तरह, और वो है हमारा क्रेडिट स्कोर. घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो या क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इस 3 डिजिट पर डिपेंड करता है आपके. लेकिन क्या हो अगर पास में कुछ गलतियाँ हो जाएँ, लेट पेमेंट्स हो जाए, कुछ कलेक्शंस या हाई बैलेंसेस की वजह से स्कोर नीचे गिर जाए आपका, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज हमारे साथ वो हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं फ्रॉम जीनू क्रेडिट रिपेयर. एंड दैट्स देयर वेबसाइट एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर. इट्स zinocreditrepair.com दैट यू कैन गो डायरेक्टली एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम, इंक्लूडिंग देयर नंबर एज वेल. एंड दैट इज ए टोल फ्री नंबर 800-400-9468. जरूर जुड़े इनके साथ एंड सी हाउ दे कैन एंड व्हाट दे कैन डू फॉर यू. एंड विद दैट लेट्स वेलकम द गेस्ट ऑफ द आवर, मिस्टर दीप. थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर आर कम्युनिटी. और आपके जवाब के लिए हम हमेशा यू नो काफी क्यूरियस रहते हैं कि पता करें कि हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ आर लिसनर्स हु हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ लो क्रेडिट स्कोर. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एयर.
1: Thank you, Meetu ji. Thank you very much, and a very good afternoon to the Fun Asia Radio listeners.
0: And thank you, sir, once again for your time. तो सबसे पहले basic से ही शुरू करना चाहूँगे यहाँ पे कि हमारी community में ना credit repair ये कुछ ऐसा word है जिसको ना सुनके सब थोड़े skeptical हो जाते हैं. Some people think it's magic and something it's too good to be true. ये हो ही नहीं सकता. तो अगर आसान शब्दों में आप बताना चाहें हमारे लिसनर्स को कि जीनू क्रेडिट रिपेयर एग्जैक्टली करता क्या है और ये प्रोसेस क्या है जिससे उनकी भी काफी मदद हो सकती है.
1: जी डेफिनेटली डेफिनेटली. जब मैं स्टेट्स में एंटर करा था इन 2014, सो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द क्रेडिट रिपेयर फैक्ट्स, राइट. तो जब हम कोई भी नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कोई भी रीजन ले लो, जब भी कोई बंदा यहाँ पर आता है तो उसको क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं पता होता.
0: करेक्ट,
1: राइट. ना ही हमें क्रेडिट स्कोर्स का पता होता, ना ही क्रेडिट रिपोर्ट का, ना ही तीनों क्रेडिट ब्यूरोज का पता होता भी कौन कौन सी मेजर क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज हैं जो हमारी रिपोर्ट को अपडेट करते हैं, राइट.
0: जी.
1: तो मैं तो एक चीज जो मैंने 2014 में फेस की, अगर मैं उसको उस कंपेरिजन को देखू, आई एम वर्किंग इन द कंपनी फॉर लास्ट आई थिंक आई हैव स्टार्टेड इन 2015 एंड नाउ इट्स 2026, इट्स 11 ईयर्स, राइट. तो मैं एक चीज अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा भी, जैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफी चीजें करते हैं, राइट. तो साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें, अगर आप उस चीज को अनदेखा भी कर दो, पर क्रेडिट को अनदेखा नहीं कर सकते आज की डेट में. आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपका क्रेडिट इज बैड, आपको 1% कोई भी लोन सैंक्शन होने की संभावना नहीं है. चाहे आपने क्या पहना है, क्या खाया है, ये मैटर नहीं करेगा. आपके क्रेडिट स्कोर्स कितने और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट कितनी हेल्दी है वो मैटर करेगा.
0: करेक्ट. तो ऐसे में जीनू क्रेडिट रिपेयर कैसे हेल्प करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, ये भी थोड़ा हमें बताएं. मतलब क्या करना चाहिए, लेट्स से हमारे किसी लिसनर का क्रेडिट स्कोर जो है इट नीड्स दैट रिपेयर, इट नीड्स दैट फिक्स, इट नीड्स दैट हेल्प. तो कैसे प्रोसेस शुरू होता है कि आपको वो कॉल करते हैं, वहां से क्या होता है आगे?
1: जी देखिए, बिल्कुल. हर एक हमने जो प्रोग्राम डिजाइन करा वी आर जस्ट हेल्पिंग दोस पीपल्स जिनका क्रेडिट स्कोर्स बहुत ड्रॉप करा हुआ और उनको कोई भी चीज अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है. चाहे वो हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें या हाउसिंग की बात करें, राइट. रीफाइनेंस करना है, कुछ भी करना है, तो हमको एक बेटर क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए,
0: राइट.
1: अब क्रेडिट खराब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने अपनी इंटरव्यू के स्टार्टिंग में करा, आपकी लेट पेमेंट हो सकती है, कोई कलेक्शन अकाउंट्स हैं, हाँ. या हाई बैलेंसेस हो सकती हैं. बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, पर इसके अलावा और भी कई चीजें होती है. जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसकी लेट पेमेंट्स हैं, किसी वजह से उसकी पेमेंट मिस होगी जो उसकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसके साथ स्कोर ड्रॉप कर रहे हैं, राइट. पर कई बार कई क्लाइंट्स ऐसे हमें कॉल करते हैं वो मिनिमम पेमेंट्स भी कर रहे होते हैं पर स्कोर्स फिर भी बूस्ट नहीं करते. सो दे आर डिफरेंट सिनेरियोस, राइट. तो मैं तो ये कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को, मैं कहीं पर भी इंटरव्यू पे जाता हूँ, दैट वी आर 100% परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी, और मोर ओवर हम कोई अप फ्रंट फी नहीं चार्ज करते, हमारा जो कंसल्टेशन है ओवर द फोन इज फ्री, तो आपको कोई कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, अभी कंपनी चार्ज करेगी अपफ्रंट नहीं, आप कॉल करो, ये जस्ट वन कॉल अवे, अपना हमारे क्रेडिट स्पेशलिस्ट हैं जो आपके फोन कॉल का इंतजार करते हैं, आप उनके साथ अपना अपना जो भी आपका कोई क्रेडिट के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम, आप डिस्कस करो उनके साथ, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट उनको बताओ भी हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें इन एक्यूरेट है, कौन कौन सी चीजों पे काम करने वाला है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट.
0: जी राइट, एंड दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन ऑर्डर फॉर यू टू बी ट्रांसपेरेंट, है ना, मतलब वो अपना सारा अच्छे से बताएं कि कहाँ उन्हें हेल्प चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में आप लोग अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे. राइट
1: जी, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे उसको बीमारी नहीं बताएंगे, वो आपको मेडिसिन इलाज नहीं करेगा, तो दिस इज द सेम थिंग. अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हमें देंगे तो तभी हम उसको ऑडिट करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं आपकी रिपोर्ट के अंदर, तभी तो आप हमें आपकी हेल्प कर पाएंगे.
0: एंड इट इज ऑल कॉन्फिडेंशियल, इट इज बिटवीन द क्लाइंट एंड यू, सो ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं बाहर जाने.
1: 100%
0: जी,
1: नेवर. इवन हम अगर आप क्लाइंट हैं, लेट्स सपोज यू आर अ क्लाइंट ऑफ जीनो क्रेडिट,
0: राइट,
1: तो आपकी जो क्रेडिट फाइल है वो एक पर्टिकुलर बंदे के पास है.
0: ओके,
1: एक स्पेशल क्रेडिट स्पेशल जो आपका एजेंट है वो आपकी आपकी फाइल के ऊपर असाइन करेगा, जो आपको अपडेट करेगा या करेगी आपकी फाइल के ऊपर कौन कौन सी चीजों पे काम हो गया या हो रहा है. तो अगर मान लो जाइनो के अंदर 50 बंदे काम करते हैं, अगर आपकी फाइल एक बंदे के पास हो, दूसरे बंदे के पास आपकी फाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं है.
0: ओह आई सी, इट्स दैट यू नो,
1: राइट,
0: एक मेंटेन किया जाता है उसके ऊपर. ठीक है, All right, got that.
1: 100%.
0: मुझे याद है कि आपने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि ये जो प्रोसेस चलता है, क्योंकि इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम और सबका अपना अलग अलग टाइम लगता है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो प्रोग्रेस है ये भी ये मॉनिटर कर सकते हैं क्लाइंट, राइट?
1: 100%. आपको एक पोर्टल एक्सेस मिलता है व्हेन यू आर एनरोलिंग विद द सर्विसेज, आपको एक पोर्टल एक्सेस मिलता है, तो आप पोर्टल एक्सेस पे लॉगिन करो, आपको पासवर्ड और आईडी हम प्रोवाइड करेंगे, आप आराम से बैठो. आपको अगर कॉल, कई क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं भी हमें कॉल कोई मत करो, भी हम उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वी डोंट नीड समवन टू कॉल अस.
0: इट इज दैट क्लियर,
1: आप अपनी आप आराम से, राइट, इट्स वेरी क्लियर, इट्स ट्रांसपेरेंट. आपको अपनी फाइल के ऊपर आपको सब कुछ दिखेगा भी आपकी फाइल कौन, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्रीज थी आप जब हमारे पास आए थे और कितने निकल गए और कितनी पेंडिंग है.
0: जी,
1: सो इट्स दैट क्लियर. जी,
0: Thank you so much for your time, Deep. And Mr. Deep, looking forward to connect with you same time next Monday. लेकिन आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मेरे लिसनर्स को, कि आप जा सकते हैं on the website and find out more about them. It's xenocreditrepair.com and that toll-free number is 800-400-9468. Thank you, Mr. Deep. Thank you for
1: And we are working in all states, right? Thank you very much.
0: Thank you, Jee. Thank you for that information as well. Thanks. Really appreciate it. Thank you. And Bye. Ladies and gentlemen, this is Gapshap Gali with B2. Ek aur film jiske baare mein baat karna banta hai. It is Razi, which released on this day, 11th of May.

0: दिस स्पाई थ्रिलर डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म दैट इट वॉज, और ये आज ही के दिन रिलीज हुई थी 2018 में. जाने से पहले आप लोगों के लिए है नियॉन कैक्टस की तरफ से एक तोहफा, एंड दैट इज दैट $20 डिस्काउंट दैट आई वॉन्ट मेक श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आपको मिलता है मेक्सिकन फूड के साथ ग्लोबल फ्यूजन खाना, एंड इट इज अमेजिंग खाना दैट दे ऑफर. और इसीलिए तो चाहती हूँ कि आप में से कोई जरूर जीते फ्रॉम दिस प्लेस. गिव मी अ कॉल इफ यू नो विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ये रहा आपके लिए कुछ क्लूज. देवानंद डायरेक्टर थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, एंड ही ऑल्सो एक्टेड इन दिस फिल्म, ए फिल्म दैट रिलीज्ड ऑन दिस डे 11th of May 1990, जिसके जिस फिल्म में देवानंद के साथ आमिर खान भी थे. जी हाँ, साथ में एकता, इफ यू गाइज रिमेंबर, एंड आदित्य पांचोली, एंड दिस वॉज ए स्पोर्ट्स action film. Ladies and gentlemen, if you know the name of the film, I need to know your name. You are live on air. Bataiye, kya hai jawab?
1: Hi, this is Srikant here. Can you hear me?
0: Yes, crystal clear. Bataiye, kya hai film ka naam?
1: Yeah, so aapne pucha 1990 movie hai na?
0: Ji haan. Aur isme Devanand, Aamir Khan, Ekta, Aditya Pancholi. Do you know which film I'm talking about? मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद आप जानते नहीं हो, आप तुक्का लगाने के लिए रेडी हो, बट यस इट इज अव्वल नंबर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, और प्लीज होल्ड करें बिकॉज यू जस्ट वन फॉर योर सेल्फ फ्रॉम नियॉन कैक्टस दैट $20 डाइन इन डिस्काउंट दैट यू गेट. कंग्रेचुलेशंस, होल्ड करें. हाँ, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, येस इट इज अव्वल नंबर, जो कि चली नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे, बट बिलीव इट और नॉट, एक इंटरव्यू में मुझे हाल ही में पता चला कि दिस इज दैट फिल्म जो उन्होंने अपने फादर के प्रेशर में आने के कारण किया था. ही कुडंट से नो टू इट बिकॉज ऑफकोर्स देवानंद वॉज बिहाइंड द फिल्म, एंड ताहिर हुसैन आमिर खान's फादर इन एक्शन टू मेकिंग हिम डू दिस फिल्म.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो और ये है आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। अभी स्टूडियो में वक्त हो चुका है 12:40 और आज है मंडे। हां जी, मैं क्या करूं, मेरा तो दिल खुद ही बैठा जा रहा है, दिल है ना एकदम रोने को आ रहा है और बार बार कह रहा है कि प्लीज कोई वीकेंड वापस ला दो, लेकिन कोई ना। आज मैंने ना सुबह उठते ही कसम खाई थी कि मैं अपने लिसनर्स को मंडे ब्लूज बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं उनके मंडे ब्लूज को मैंगो मूड में कन्वर्ट करूंगी। कैसे बताती हूँ, तब तक आप ये गाना तो एंजॉय कीजिए।

हाँ जी, जैसे ही जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये जो मंडे ब्लूज है ना, उनको तोड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत ही असरदार मजेदार सॉल्यूशन है, और वो है आम। मतलब ये सॉल्यूशन आम नहीं है, बट सॉल्यूशन आम ही है। आम यानी कि मैंगो। जी, हम मैंगो की बातें कर रहे हैं। अगर मैं अपने मेमोरी लेन में जाऊं, या फिर हम जनरली बात करें, तो अगर हम उन गोल्डन पीरियड में जाएं जब हम स्कूल के आने के बाद रेफ्रिजरेटर खोला करते थे और अंदर हमें मिलते थे ठंडा ठंडे आम, मतलब क्या मज़ा आ जाता था ना। और अगर मैं अपनी फेवरेट मैंगो मेमोरी की बात करूं, तो वो था जब मैं अपने चाइल्डहुड डेज में थी और मेरे घर के आसपास बहुत सारे आम के पेड़ थे, और जैसे ही तेज़ हवा, आंधी या तूफान आता था, तो वो ख़त्म होते ही मैं और मेरे दोस्त एकदम दौड़ लगा देते थे उन आम के बगानों में, क्योंकि हमें मिलते थे बहुत सारे गिरे हुए मज़ेदार आम। तो ये तो थी मेरी फेवरेट मैंगो मेमोरी। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी फेवरेट मैंगो मेमोरी क्या है। आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं 972-235-5555 पे। प्लीज कॉल करें और बताइए अपनी फेवरेट मैंगो मेमोरीज।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
11: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
12: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
13: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
14: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
15: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
16: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
17: उमर ख्वाजा।
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
19: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

दोस्तों आज है मंडे और हो रहे होंगे बहुत सारे लोगों को मंडे ब्लूज, लेकिन इस मंडे ब्लूज को हम टैकल कर रहे हैं अपने मैंगो मेमोरीज के साथ। जी हाँ, हमने ब्रेक से जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपकी फेवरेट मैंगो मेमोरी कौन सी है, और बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत मजा आया सबकी स्टोरी सुन के। और मैं कुछ स्टोरीज जो काफी इंटरेस्टिंग रही है वो आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मारूफ खान जी ने कहा है, वो फिलहाल रिटायर्ड 68 years old हैं, पर उनको आम का नाम सुनते ही अपने 14-15 साल वाले पुराने मारूफ मियां की याद आ गई, जब वो बगानों में जाके कैरियां तोड़ते थे। तो कैरिया तो सब लोग तोड़ते थे, उसमें खास क्या है, बट इनके पास एक खास जुगाड़ था जी। इन्होंने और इनके दोस्तों ने अपने डंडे पे है ना नाइफ लगा रहता था, और वो डंडे को पेड़ों के ऊपर मारते रहते, कैरियों में लगते रहते, और कैरिया टूट के इनके झोली में आ जाती थी। कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये जो देसी जुगाड़ होता है इसमें तो मतलब मजा ही दिला देता है। और हमें कॉल आया सुरैया जी का भी, और उन्होंने कहा कि ये जो आम की कहानियां है ना, ये आम नहीं है, मतलब मैंगो जो है ना ऑर्डिनरी नहीं है जी। उन्होंने अपनी जो है हैदराबाद के दिनों की कहानी बताई, जब वो गलियों में जो नहीं आते वेंडर्स अपने थैलों में सामान लेके बेचने के लिए, वो जो हम यूएस में काफी मिस करते हैं, और वो आम वाला बंदा आता था, और एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है जो काफी फेमस है उधर, उसको कहते हैं रुमानी। तो वो जो है पूरा एकदम गलियों में चिल्लाता हुआ जाता, रुमानी ले लो, मुमानी ले लो। अब खास बात ये है कि ये जो मुमानी है ना, इसका मतलब होता है मामी, यानी कि योर अंकल्स वाइफ। तो सुरैया जी और उनकी फैमिली जो है काफी हंसा करती थी ये सुनते ही। और ये थी उनकी स्टोरी मैंगो से रिलेटेड, पर आपकी क्या है आप भी तो बताए ना, मैं तो बैठी हूँ, कॉल लगाइए 9722355555 पे, मैं इंतजार करूंगी। तब तक आप ये गाना एंजॉय करें।

तो मेरी फन एशिया फैमिली, अभी अभी जो है बहुत ही ताज़ा ताज़ा न्यूज़ आ रही है इंडिया से, जहां की मोदी जी ने कहा है, रिक्वेस्ट किया है सारे अपने प्यारे देशवासियों को के लिए कि अवॉइड कीजिए गोल्ड खरीदना, एक साल तक फॉरेन ट्रिप्स पे जाना अवॉइड कीजिए, और इससे मतलब गोल्ड ना खरीदने के नाम से, सोना ना खरीदने के नाम पे औरत समाज में ना थोड़ा सा दुख सा छा गया है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो इंडिया में हुई है, आप है US में, आप अभी भी जाके जितनी मर्जी सोना चांदी सब खरीद सकते हैं मलाबार गोल्ड डायमंड्स में, जो कि परफेक्ट डेस्टिनेशन है स्टनिंग डायमंड रिंग्स के लिए, ईयर रिंग्स के लिए, नेकलेसेस, और उससे भी ज्यादा हर एक स्पार्कल के लिए जो चाहिए आपके मोमेंट को और स्पेशल बनाने के लिए। फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, उनका जो डायमंड कलेक्शन है ना, वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, टाइमलेस डिजाइंस है, आप उसको बार बार पहन सकते हैं, चाहे वो इंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी हो, या फिर एक प्लेन सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी हो। तो अभी डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए। और बता देती हूँ कि जो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स हैं वो सिचुएटेड है प्रेस्टन रोड में, फ्रिस्को में, और ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: इंतजार।
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
2: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
2: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
6: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
13: Front page का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी गारंटी है।
12: कैसे?
13: Page 3 eatery?
12: No, not another restaurant again.
13: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
12: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
14: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो।
17: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: भाई, ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
3: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
19: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
3: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट at Osho Transformation Retreat.
5: May 14th to May 17th, a 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.
7: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
16: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा विद मी, यानी कि आरजे सिमी, एके आरजे देसी गर्ल। और आज हमारे शो में है मिस्टर अमन, ही इज रिप्रेजेंटेटिंग Ura, which is the largest debt settlement company. Aman, you are on air. We would like to hear from you. Welcome to Funisha Radio 104.9 FM.
2: Funisha सुनने वाले सभी listeners को Ura और Aman की तरफ से नमस्कार. So,
0: ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 तारीख और 15 तारीख को मिडल ऑफ द मंथ में पहुंच जाएंगे. कभी अभी शुरुआत ही हुई थी कि वक्त भागा जा रहा है. और बाय दैट कि इस समय तक हमारे क्रेडिट कार्ड वालों ने मिनिमम पेमेंट की चिट्ठियां तो आपके घर में पहुंचा ही दी होंगी, लेकिन ये गलती जो पिछले साल या पिछले महीने या पिछले दिनों में आप करते आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरकर सिर्फ टाइम पास, यानी कि ये सोच रहे हैं कि चलो अगले महीने देखेंगे, अगले महीने कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, कोई स्टेट का चेक नहीं आने वाला, तो फिर मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड नहीं उतरता. क्योंकि आप 28 से 40-47% इंटरेस्ट भरेंगे और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट. हिंदी फिल्मों में मुनीम जी वाला अकाउंट अगर आपने देखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, तो इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता. तो इससे ही क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरता नहीं. अगर आप भी परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं उतर रहा, या कोई पर्सनल लोन है उसका कर्जा नहीं उतर रहा, या गाड़ियों के लोन है, जो गाड़ी रीपोजेस हो गई, गाड़ी बैंक उठाकर ले गया, अब ना ही गाड़ी है, लोन स्टिल आपके सर पर है, उसका लोन नहीं उतर रहा, गाड़ी टोटल हो गई, इंश्योरेंस ने आधा पे ज्यादा लोन का जो पे किया है, बाकी आपका लोन आपको उतारना है, उसको भी नेगोशिएट किया. इस तरह के सारे लोन्स को अगर आप आधे से ज्यादा माफ करवाना चाहते हैं तो आप उरा को कॉल कीजिए. जी हाँ, आधे से ज्यादा अगर माफ हो जाए तो बाकी आधा बचेगा, उसकी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बन जाएंगे. क्रेडिट कार्ड का कोई भी मसला हो, क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी, बिजनेस का, पर्सनल स्टोर, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, जस्ट आप लेके आइए, आधा कर्जा माफ हो जाएगा, आधे से ज्यादा जो माफ होगा उसके बाकी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बन जाएंगे. सो जस्ट गिव अस अ कॉल. मिनिमम पेमेंट भरते रहने से बेटर है अपना कर्जा खत्म कीजिए, जिससे आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, आपको नए लोन इजीली अवेलेबल मिलेंगे, डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होगी. सो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत इजी नंबर है 1-888-888-9914, 888 अगेन 888-9914. सो 1-888-888-9914 ये याद रखा जा सकता है. अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं एनी टाइम, कॉल मी डायरेक्टली, सेल फोन पे कॉल कीजिए, मेरा टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9167763555, अगेन 9167763555, अगेन 9163775. मैं अपना नंबर ही भूल गया. तो खैर, इस हमारी वेबसाइट है www.ura.org. लेकिन अगर नंबर नहीं में लिख पाए हो तो फन एशिया रेडियो कॉल कीजिए. अच्छे से गाने की फरमाइश के साथ आप अपने दोस्त अमन का नंबर ले सकते हैं.
4: थैंक यू सो मच अमन. आपने जो ये मुनीम जी वाली एग्जाम्पल दिया वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद आया, एंड मुझे लगता है कि फनेशा फैमिली को भी पसंद आएगा और वो रिलेट कर पाएंगे. थैंक्स अगेन, वील कनेक्ट विद यू अगेन.
0: अगर आपको याद हो पुरानी फिल्मों में मुनीम जी जीवन का ज्यादातर उस तरह का रोल किया करते थे.
4: हाँ जी हाँ जी,
0: है ना. चलिए ठीक है, थैंक यू जी.
4: थैंक यू अमन एंड माय फनेशिया फैमिली, आपके लिए तो गाने लगातार बज ही रहे. अच्छे अच्छे, कीप एंजॉयिंग एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM.

दोस्तों, आज का जो हमारा सेगमेंट था वो मैंगो मेमोरीज के बारे में था। एंड थैंक यू सो मच उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे कॉल किया और अपनी अपनी मैंगो मेमोरीज मेरे साथ शेयर की। अब मैं इस सेगमेंट को रैप अप कर रही हूँ और जो मुझे आज की जो इंटरेस्टिंग बात लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दी है कि मंडे जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें मैंगो पर्सपेक्टिव चाहिए। जिंदगी थोड़ी बिजी हो सकती है पर यादें हमेशा स्वीट रह सकती हैं। आप सब से एक ही रिक्वेस्ट है, एक तमन्ना है, एक दुआ है कि आप सब भी है ना ये मैंगो ब्लूज को, उससे होने वाले स्ट्रेस को थोड़ा पील ऑफ कीजिए और मंडे मूड में नहीं भी तो मैंगो मूड में तो रहिए, है ना। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों वक्त हो चला है लंच का और मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मैं इस शो के बाद जाने वाली हूँ P3E3 में। और अगर आपको भी ऐसा कोई लोकेशन चाहिए, एक ईटिंग प्लेस चाहिए जहाँ की इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता हो मॉडर्न फ्लेवर के साथ, चाहे वो कबाब हो, चाट हो, फ्यूजन बाइट्स हो या फिर मॉकटेल्स हो, तो आप भी जा सकते हैं P3E3 जो कि लोकेटेड है और एट हब 121। और यहाँ जो है ना बहुत सारे वाइब्रेंट वाइब्स है, आप ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं या फिर डिनर के लिए भी जा सकते हैं। ये परफेक्ट लोकेशन है फूडीज के लिए, अगर आप किसी को डेट्स पहले जाना चाहते हैं तो उसके लिए, और या फिर अगर आप जस्ट एक फ्लेवर चेजर हैं मेरी तरह तो जाइए। और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं उनके वेबसाइट पे जो कि है P3E3.com, और वहाँ पे जाइए, अच्छा अच्छा देखिए क्या खाने को मिल रहा है, खाइए, मौज कीजिए, यही जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों।

दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस सेगमेंट में जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, शुरू हो चुका है हमारा गिव अवे राउंड। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप जो है अपने बिजनेस एक्सपेंस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में बदलना चाहते हैं तो कनेक्टिंग अमेरिका आपका गो टू प्लेस हो सकता है। ये एक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं आपके बॉटम लाइन्स को, आपके प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने में, उनको बूस्ट करने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स अपने मोर्टगेजेस जो हैं पे ऑफ करने में 10 साल या फिर उससे भी कम समय में। तो फिर इंतजार किस बात का है, आज ही कॉल लगाइए जेम्स को एट 321-888-7345 पे, या फिर विजिट कीजिए connectingamericafinancials.com और बस शुरू कर दीजिए अपना डेली एक्सपेंस को, है ना, एकदम इनकम सोर्स में बदलने के लिए। ये तो बात हुई कनेक्टिंग अमेरिका की, और हम बात करते हैं आपकी और हमारी। जी हाँ, गिव अवे राउंड शुरू हो चुका है, और बस मैं एक रूल आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वही लोग खेले, उन्हीं लोगों के कॉल आने चाहिए हमारे पास जिन्होंने लास्ट एक महीने में कोई देसी मंडी, कोई भी फन एशिया रेडियो में कोई यू नो हैम्पर जीता ना हो। तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए, सबके साथ खेलने का मजा लेना चाहिए। तो शुरू करें, ध्यान से सुनिए। आज का जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो टूटने के बाद ही खाई जा सकती है। मैं रिपीट करती हूँ, गिव अवे राउंड का क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही खाई जा सकती है। कॉल कीजिए और मुझे अपना जवाब सबमिट कीजिए एट 972-235-5555 पे।

जी, हमने अभी अभी अपना गिव अवे राउंड जो है खेल लिया है, और आज का सवाल था कि वो कौन सी चीज है जिसको तोड़ के ही खाया जा सकता है, और हमें बहुत सारे जवाब आए, और एक्चुअली इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। वो अंडा हो सकता है, कोकोनट हो सकता है, अखरोट हो सकता है, बहुत सारे पिस्टाचियोस भी हो सकते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर भी आया कि रोटी। देखा जाए तो लॉजिकल भी है, क्योंकि रोटी को भी तो तोड़ने के बाद ही खा सकते हैं ना उसको, मतलब आपको दांत से तो खींचना ही पड़ेगा। तो हमने बोला नहीं नहीं हम तो ये आंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉजिकली सही है। बट जो मेरे दिमाग में आंसर था, जो मैंने ये रिडल सोचा था, तो जो आंसर था वो था अंडा। आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। तो आज की हमारी विनर है आशा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशा जी, आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इसमें जो है बहुत सारे असॉर्टेड ज्वेल ग्रॉसरीज होती हैं फॉर डे टू डे यूज, और उसमें कुछ मीठा उठा भी रहता है। और आप जाइए बिल्कुल देसी मंडी सिचुएटेड एट लुइसविल, और अपना गिफ्ट हैम्पर कलेक्ट कीजिए। हमें 24-48 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम आपकी डिटेल्स देसी मंडी तक पहुँचा पाएं। Congratulations once again, Asha ji, and thank you everyone for participating in this exciting giveaway today.

0: गुड इवनिंग एवरीवन।
1: आपको खबर नहीं होगी पर मैं बता देती हूँ कि अगर आप या आपके कोई फ्रेंड हैं H1B पे, F1 पे, L1 पे या किसी भी अन्य नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं और आप प्लान कर रहे हैं US परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो सीमा मेहता और उनकी टीम जो है हेल्प कर सकती है। जो अटर्नी सीमा मेहता है और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो स्पेशलाइज करती है पर्टिकुलरली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजास, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजास, PERM लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप टू। अगर आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम पे, तो आप ईमेल कर सकते हैं info@seemamehtalawfirm.com। आई रिपीट इट फॉर यू, info@seemamehtalawfirm.com। और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, कल फिर मिलूंगी इसी वक्त पे 12:30 से 2:30 बजे तक। मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे थे आफ्टरनून अड्डा एट फन एशिया रेडियो 104.9 FM। कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक।

0: Cisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
2: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
3: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
2: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
4: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
5: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
4: रोज का सेम प्रॉब्लम
6: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
7: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
8: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
9: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ लुमडी लर्निंग सेंटर बिल्ड मास्टरी अनलॉक पोटेंशियल
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
11: Immigration is a serious concern for our community and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
14: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
13: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए
15: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA लोन एक्सपर्ट्स फैसला क्लैरिटी के साथ
16: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio

A very warm welcome to the listeners of 104.9 FM Funisha Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और मेरे साथ आप रहेंगे आज पूरे ये दो घंटे. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर, पसंद आपकी, आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन पे. यही होता है मंडे स्पेशली का खासा. और आपकी मन पसंद आरजे के साथ, यानी कि मैं किरण आपके साथ मौजूद रहती हूँ. और ढाई बज चुके हैं जी, अराउंड चार सवा चार तक मैं आपकी फरमाइशें लूंगी. सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. 90s से आगे का आपने गाना रिक्वेस्ट करना है, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो, हैपनिंग हो, मजे का हो, तो ज्यादा मजा आएगा. तो आपकी फोन कॉल्स के लिए लाइंस हैं खुली. लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी. वंस अगेन वेलकम टू फनीशा रेडियो. होप यू आर हैविंग अ लवली मंडे एंड यू हैड अ ब्यूटिफुल वीकेंड लास्ट दिस वीकेंड दैट हैपेंड एंड अ वेरी हैप्पी मदर्स डे दैट यू सेलिब्रेटेड विद योर फैमिली.

0: रॉड की तरह अटक रहा है। यार तेरा हमेशा का यही लोचा, इंटरेस्ट मिलाता है और अटका देता है।
1: ओए साला, तेरे को मालूम अपने कितना खुशी होता है, आगे बता।
2: सेलुलर पे कॉल आया, उसने नोका बटन दबाया, टेलीफोन का

0: ये तो कमाल हो गया, तू तो माला माल हो गया। मोहब्बत के खजाने में एक मिनट, उसने कुछ कहा कि नहीं? हाँ,
1: उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा।

मस्त फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना. और जी आफ्ताब शिवदसानी और उर्मिला मातोंडकर हमें नजर आए इस फिल्म में. चल रहा है पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. आपकी रिक्वेस्ट ले रही हूँ 9722355555. मैं हूँ किरण. और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना खाना है, आज बिल्कुल घर नहीं पकाने का दिल कर रहा आपका, लेकिन खाना रेस्टोरेंट में भी आपको घर जैसा ही खाना है, तो फिर ऐसा रेस्टोरेंट मैं आपको बताती हूँ जी. ऐसा रेस्टोरेंट है तंदूरी फ्लेम. गार्लैंड में लोकेटेड है. आपके तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपको यहाँ पे होम स्टाइल पंच के साथ मिलेंगे. सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज, कबाब्स, एज वेल एज फ्रेश हॉट नान्स. सो जरूर विजिट कीजिए तंदूरी फ्लेम. टेक आउट कीजिए, डाइन इन कीजिए, केटर कराइए. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. और स्पेशलिटी या खासा दे जान लीजिए, होम स्टाइल पंच के साथ मिलेगा आपको खाना. फाल्गुनी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. दिस वन इज गोइंग आउट टू यू.

और जी आपकी रिक्वेस्ट का जो है कॉल्स आ रही हैं, ताता बाता बंधा हुआ है। 90s से ऑनवर्ड्स हम गाने रिक्वेस्ट ले रहे हैं। आप 2026 का गाना रिक्वेस्ट कीजिए या 1990 का रिक्वेस्ट कीजिए, 90s से ऑनवर्ड होना चाहिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिक्वेस्ट। और अगला गाना प्ले करेंगे जी इल्ता की, एक्चुअली ये हम सौरभ की रिक्वेस्ट पे पहले प्ले करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रिक्वेस्ट ले रही हूं मैं। लेकिन इस गाने को प्ले करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल सबने किया मदर्स डे सेलिब्रेट। आई एम श्योर आपने बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन की होगी टू ऑल दोज मदर्स इन योर फैमिली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपकी मदर हो, एनीवन एंड एवरीवन। लेकिन तनिष्क ज्वेलर्स ने आज आपके लिए एक डील जो लगाई हुई थी मदर्स डे की, वो आज तक है। तो अभी एक दिन आपके पास है वो मदर्स डे की डील लेने का। तो मैं आपको बताती चलूं कि जी मदर्स डे जो है वो आपको आज और ये डील वैलिड है। 20% ऑफ मिल सकता है आपको ऑन डायमंड वैल्यू, उसी के साथ 20% ऑफ आपको मिल सकता है ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस, एंड 0% ऑफ आपको मिल सकता है डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड विच इज 18 कैरेट्स एंड अबव। तो ये तीन आपके लिए स्पेशल्स चल रहे हैं तनिष्क ज्वेलर्स पे, जरूर विजिट कीजिए आप उन्हें। अभी एक दिन ये बाकी है इस डील का। इफ यू हैवंट रियली बॉट समथिंग और यू स्टिल वांट टू डू समथिंग फॉर दोज दैट स्पेशल लेडी इन योर लाइफ, देन तनिष्क ज्वेलर्स इज स्टिल हैव दैट डील गोइंग ऑन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज 11th मे इज द लास्ट डेट फॉर दैट। 20% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू, गोल्ड ज्वेलरी making charges, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. And this one is going out to Saurabh.

0: अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी उमर ख्वाजा इज दैट पर्सन जो आपको इस सिचुएशन में बेस्ट कॉम्पनसेशन दिला सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, ही विल फाइट योर केस, ही विल डील विद ऑल द लीगैलिटी, द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, एंड गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग until you win. तो ये आपके लिए एक win-win situation है, चाहे आप या आपका कोई जानने वाला, कोई प्यारा इस situation से गुजर रहा हो. तो आप उन्हें attorney उमर ख्वाजा का number दीजिए. That is the best help that you can do for them or thing that you can do for them right now. Number for that free consultation is 469-300-5046. 469-300-5046 अटर्नी उमर ख्वाजा का नंबर, या फिर आप उनके वेबसाइट विजिट कीजिए विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल देयर. दैट वेबसाइट इज attorneyomar.com. एंड दिस वन इज गोइंग आउट टू निलांग.
1: आई लव यू ऑल. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
5: Astrology readings for guidance on your results may vary.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट। प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
9: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
3: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
9: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: इससे पहले कि आप इसे एक एड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको, जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
13: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
14: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
15: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे यानी कि मैं किरण लेकर आई हूँ. दिस इज फिल्मी फरमाइश आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. सुन रहे हैं आप 104.9 एफएम फानेजा रेडियो. बिल्कुल सही जगह पे हैं. चैनल मत चेंज कीजिए. आप ही की फरमाइशें प्ले कर रही हूँ. और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊँ सबा की रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना चिकन फ्रॉम द मूवी दिल जले प्ले करने से पहले आपको बताएं जी कि अगर आपने अभी तक देसी मंडी चेकआउट नहीं किया तो लुइसविल में लोकेटेड है द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. बहुत ही ब्रिलियंट डील्स और ऑफर्स होती हैं उनकी ग्रोसरी पे. चाहे आपको सब्जियां खरीदनी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने हो, या फिर आपको अपने दाल चावल रोजमर्रा की देसी ग्रोसरीज खरीदनी हो, और या फिर आपको मीट खरीदना हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट देसी ग्रोसरी लोकेटेड देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल. और साथ ही साथ जब आप शॉपिंग करके थक जाएं तो खाना पीना भी अवेलेबल है जी. जी हाँ, वहीं बैठे आप खाना भी खा लीजिए तो सारा कुछ एक ही चक्कर में हो जाएगा. और खाने पे भी लगी हुई हैं उनकी बेहतरीन डील्स. और हमारा फेवरेट वर्ड आजकल इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, विच इज व्हाट, बोगो, बाय वन गेट वन. जी हाँ, मंडे और वेंसडे को अगर आप जाएंगे तो बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा आपको बिरयानी, नूडल्स या फिर फ्राइड राइस. ट्यूजडे और थर्सडे को आप जाएंगे तो बाय वन गेट वन चल रहा है डोसा और चाट्स के ऊपर. 5 बजे शाम से 9 बजे रात तक ये डील आपके लिए वैलिड रहती है, यानी कि 4 घंटे शाम के जो पीक टाइम होता है आपकी भूख का. ग्रोसरी भी कीजिए, खाना भी खाइए, एंजॉय भी कीजिए. मिक्स एंड मैच अलाउड नहीं है जी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. लेकिन आपको मिलेगा मंडे टू थर्सडे 5 PM to 9 PM दीज बोगो डील्स. गो इन अवेल देम. 972 तो हमारा नंबर है. दिस इज देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. सबा, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

है कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: केकी की आवाज़ में पल गाना आप चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे सुन रहे थे। आपकी लाइव फरमाइशें ले रही हूँ जी, और अब वक्त आ चला है जब हम कनेक्ट करेंगे हमारे कॉन्वर्सेशन कॉर्नर के साथ। दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन। फन पिज्जा किचन वो जगह है जहाँ आपको पिज्ज़ा मिलता है देसी ट्विस्ट के साथ। चाहे आपको अचारी पनीर पिज्ज़ा खाने का मूड कर रहा हो, या फिर विच इज ऑफकोर्स अ वेजिटेरियन लवर, या फिर नॉन वेज में तंदूरी चिकन पिज्ज़ा खाने का दिल कर रहा हो, या आपको पनीनीज खाने हो, या आपको जो कुछ भी आपका दिल है जी, फन पिज्जा किचन में आपको मिल जाएगा। प्योर स्मोकी परफेक्शन है फन पिज्जा किचन के तमाम पिज्जास की। सो जरूर विजिट कीजिए, funpizzakitchen.com इज द प्लेस वेयर यू नीड टू लॉग ऑन, चेक आउट देयर मेन्यू एज वेल एज देयर डिटेल्स। और ये $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण। यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को टू कलेक्ट योर कार्ड इन पर्सन। सो इफ यू कैन मेक दैट ट्रिप देन दिस इज द गिव अवे फॉर यू। तो जी, हम आपकी पसंद के गानों की ही बात कर रहे हैं, तो आप ही के पसंद के गानों के ऊपर ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर हम कंडक्ट करते हैं या बात करते हैं कि गाने जो हैं वो आजकल जो लेटेस्ट गाने हैं वो गाने या थोड़े से पुराने गाने या 90s से आगे की रख लीजिए, बिकॉज उससे 80s और 70s तो बिल्कुल एक डिफरेंट एरा और एक डिफरेंट दौर था। तो 90s के गाने या आजकल के गाने, कौन से गाने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं आपको अट्रैक्ट? व्हाट डू यू थिंक इज यू नो एक्साइटिंग अबाउट टुडेज सॉन्ग जो एकदम से इतने बड़े से हिट हो जाते हैं और हर बंदे की रेडियो पे वही चल रहे होते हैं और उसके बाद वो इतनी जल्दी फेड डाउन हो जाते हैं या फेड अवे हो जाते हैं और नए गाने आ जाते हैं। सो क्यों ऐसा होता है, और पुराने गानों में वो चार्म क्यों था, और आजकल के गानों के कौन सा ऐसा गाना है जो, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आप कुछ भी मुझसे बात कर सकते हैं कि आजकल के गानों का क्या चार्म है और क्या नहीं है जो आप मिस करते हैं, जो होना चाहिए ये पुराने गानों का वो चार्म आजकल के नए गानों में भी। 9722355555 अपनी पसंद के गाने आप सुन रहे हैं, मुझसे बात भी कीजिए। कॉन्वर्सेशन कॉर्नर लेके आई हूं, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन। $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं। मुझे बताइए आजकल के गानों में वो क्या बात होनी चाहिए जो कि यू नो उनको स्पेशल बना सकते हैं या नहीं है स्पेशल या है, ये तो आप बताएंगे मुझे। 97 फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए।
1: हाय, माय नेम इज शिखा।
0: शिखा,
1: या
0: ऑलराइट शिखा, बताइए क्या आजकल के गानों में आपको अपना आप कुछ भी बताइए कि आजकल के गाने क्यों उस तरह हमें हिट नहीं करते या करते हैं। व्हाट इज योर स्कूल ऑफ थॉट?
1: यू आर करेक्ट एक्चुअली किरण जी, दैट आजकल के सॉन्ग उतना हिट नहीं करते, या अगर हिट करते हैं तो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहते हैं इन द मेमोरी कंपेयर टू द ओल्ड सॉन्ग। सो फर्स्ट थिंग इज आई वुड से द लिरिक्स की बात करूंगी मैं, क्योंकि लिरिक्स आई थिंक उतने डीप डाउन मीनिंग वाले नहीं होते जैसे पुराने सॉन्ग्स में होते थे। अगर आप ठीक है, अभी आप 80s 90s की बात कर रहे हैं सॉन्ग्स की, देन ऑल्सो वी हैड सम क्वांटिटी ऑफ यू नो गुड लिरिक्स एट दैट टाइम, राइट, दैट वी कुड रिलेट टू, दैट वी कुड एनहांस अपॉन। आजकल के लिरिक्स जिस तरह से बन रहे हैं, दे आर रियली लाइक दे आर यूजिंग सम डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टूगेदर।
0: मुझे तो स्लैंग ही सुनाई देता रहता है, जैसे स्लैंग में बात हो रही है।
1: करेक्ट करेक्ट, आई मीन अजीब सा ही स्लैंग है, अजीब सा ही, आई डोंट नो, मे बी जेन जी लैंग्वेज है जो दे आर टेकिंग अप, दे आर नॉट, विच वी कैन नॉट रेजोनेट टू वेरी मच, बट दैट इज माई वन टेक, दैट लिरिक्स हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, अ लॉट ऑफ वेट इन टूडेज सॉन्ग that they carried over in 90s, 80s or 90s, and agar aap usse bhi back chale jaye to lyrics ka kya hi kehna tha, they had real wonderful meanings into it, so that you know even a chote bacche ko bhi aap samjhayenge to uske liye inspirational honge, but aajkal ke songs itne inspirational utne पोएटिक वे में नहीं कहे जाते जितने होने चाहिए, तो इसलिए आई थिंक दे आर शॉर्ट लिव्ड।
0: एब्सोल्युटली शिखा, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच। प्लीज सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट। जी हाँ जी, दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट मेड बाय शिखा। लिरिक्स इज वन थिंग दैट इज नॉट अप टू द मार्क्स, या शायद हमारे लिए नहीं है, शायद जेन जी के लिए हो। फनी रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए।
2: शाहिना, किरण जी कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बताइए आज कल के गानों में और पुराने गानों में आप क्या फर्क देती हैं? आर यू अ फैन ऑफ टुडेज सॉन्ग्स, प्रीवियस यस्टरडे सॉन्ग्स?
2: नो, नॉट अ बिग फैन. द पुराने गानों में है ना आपको मैसेज क्लियरली मिलता था, आप वो मैसेज इजीली आप समझ सकते थे. और जब भी पुराने गाने आप सुनते थे ना, जब हम सुनते हैं पुराने गाने, हमको इतना सूदिंग, मतलब एकदम सूद होता है, एकदम एकदम हमें ना पुराने जमानों में चले जाते हैं. भले हम वो जमाने के नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सॉन्ग को सुन के हमें ऐसा लगता है कि हम उस दिन उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये गाने बनते थे. और उसके मैसेजेस बहुत अच्छे होते थे, आप क्लियरली समझ सकते थे वो मैसेजेस.
0: राइट राइट राइट, ओके वंडरफुल लशिका. सो मैसेज इज वन थिंग, और आप भी मेरे ख्याल इनडायरेक्टली लिरिक्स ही की बात हो रही है कि द लिरिक्स एंड द वे द सॉन्ग्स यूज टू कनेक्ट विद अस विद द म्यूजिक एंड द लिरिक्स, राइट?
2: Yes.
0: All right. Yes. Shikha, thank you for your calls. You. सुनते रहिए. Fun Asia Radio, you are live on air. अपना नाम बताइए.
3: हाँ, नमस्ते जी. मेरा नाम शैलेश राणा मगर है.
0: जी से शैलेश, बताइए. What is your take on the music today? Are you a today's fan or a yesterday's fan?
3: आपका वो एक क्वेश्चन था ना कि आजकल के लिरिक्स पे वो क्या वर्ड.
0: नहीं नहीं, क्वेश्चन लिरिक्स का नहीं था जी, सवाल ये था कि आपको किस तरह के गाने पसंद है. यू कैन लाइक टुडे सॉन्ग, सवाल ये नहीं था. सवाल था आपको कौन सा गाना पसंद है, किस तरह का.
3: हाँ, मुझे वो पुराना पुराना वो था ना किशोर कुमार का, मोहम्मद रफी का. लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपको बुरा ना लगे तो.
0: अच्छा,
3: मैंने एक गाना सुना है, वो कौन सा फिल्म का पता नहीं, लेकिन ये गीत है ना वो राधा सेक्सी या राधा सेक्सी वाह एक गीत है ना.
0: जी, जी,
3: अब मुझे ये लगता है कि राधा कृष्ण को तो भगवान मानते हैं ना हिंदू धर्म अनुसार.
0: बिल्कुल सही, सही.
3: भगवान को भी सेक्सी बना दिया.
0: ठीक है जी, बिल्कुल सही है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई एम हियर टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: हाय, दिस इज राजीव.
0: हाय राजीव, बताइए आजकल के गाने पसंद है आपको कि कुछ यस्टरडेज के?
4: नहीं, मैं बाकी जन से इतना सहमत नहीं हूँ, बिकॉज ना आज भी इतने अच्छे गाने बनते हैं, इतने सारे सुरीले गाने बनते हैं, बहुत सारा मेलोडियस गाने बनते हैं. अब अगर एक्चुअली हर टाइम में ना अच्छा गाना बुरा गाना दोनों बनते थे, तो इसीलिए आज के जमाने में बहुत अच्छे गाना बनते हैं. इनफैक्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग इवन आजकल का गाने, जो सुरीला गाना होता है ना, जो मेलोडियस, इफ यू ट्राई टू सिंग इट ना, इट्स नॉट दैट इजी. जितने अभी किशोर कुमार के बाकी लोगों के गाना कर सकते हो, थोड़ा इजी लगता है, बट आजकल के गाने इतना इजी नहीं है. और एक बात भी है, आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है ना, तो सुनने में भी इतना ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली. एवरीथिंग बहुत टेक्नोलॉजी से टेक्निकली साउंड होता है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है.
0: Absolutely.
4: तो मैं दोनों गाना ही, मुझे दोनों पुराना गाना भी अच्छा लगता है, नया गाना भी अच्छा लगता है. बट
0: मतलब द पॉइंट इज के म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, और यू नो यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द सॉन्ग, एंड एवरीबॉडी कनेक्ट्स विद द सॉन्ग डिफरेंटली.
4: एग्जैक्टली. अब अरिजीत सिंह का गाना ले लो ना, कितने सारा इतना अच्छे अच्छे गाने.

0: है, नया गाना भी अच्छा
1: हाँ
0: लगता है, बट
1: मतलब
0: इट इज ऑलवेज देयर।
1: द पॉइंट इज के म्यूजिक अच्छा होना चाहिए और यू नो यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द सॉन्ग एंड एवरीबॉडी कनेक्ट्स विद द सॉन्ग डिफरेंटली।
0: अब अरिजीत सिंह का गाना ले लो ना, कितने सारा इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, कितने
1: एब्सोल्युटली
0: अच्छे, सुनते हैं तो
1: एब्सोल्युटली
0: अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही राजीव, थैंक यू सो मच फॉर दैट टेक। दैट टेक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी आपने जबरदस्त बात की है कि हर दौर में गाने अच्छे बनते हैं, इट जस्ट हैज टू बी कि आपने कौन सा सुना और आपको कौन सा पसंद आया, राइट? बिल्कुल सही, सुनते रहिए राजीव। मैं अभी आप विनर अनाउंस करती हूँ इन अ बिट। फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज किरण एंड
1: जी बताइए बताइए किरण, आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, किस तरह के गाने और आजकल का क्या चल रहा है आपका?
2: तो मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद है और स्पेशली उनका लिरिक्स, उनका म्यूजिक। एंड टू गिव द एग्जांपल आई वांट टू मेंशन इज लाइक ऑन द मदर्स डे फॉर एग्जांपल, मुझे कल जैसे पुराने गाने थे उसमें से एक जो गाना है तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है सॉन्ग, तो आई कैन लाइक staying away from mom, those like songs gives you the meaning, those gives you what you want to say, so meaning, lyrics and music, I am totally in love with the old song.
1: All right, there it is, Kiran is in love with old songs. Thank you Kiran, sunte rahiye, I'm going to announce the winner right after this. All right ji, last caller of the conversation corner, Funasia Radio, apna naam bataiye.
3: Hi, this is Shree.
1: Dobara bataiye ma'am, I can't hear you.
3: Shree.
1: ओके, ऑल राइट श्री, बताइए जी किस तरह के गाने आपको पसंद हैं आजकल?
3: आई स्टिल प्रेफर द लाइक अर्ली टू 2010, स्पेशली बिकॉज़ द नाउअडेज दे यूज सो मच लाइक लिरिक्स आर लाइक ऑल जंबल्ड अप, नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इज बीन यूज्ड एंड आई थिंक देयर इज नो अदर लैंग्वेज देन पंजाबी एग्जिस्ट एंड सो मच ईडीएम बेस्ड म्यूजिक दे आर यूजिंग,
1: राइट?
3: दैट होल इट फील्स लाइक इट इज जस्ट अ चैओस गोइंग ऑन योर हेड, देयर इज नो रिदम टू इट।
1: ठीक है,
3: that's what I miss, that beautiful harmony of the music is missing in it.
1: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, बहुत कम। अब जैसे अभी राजीव ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट बना दिया था कि अरिजीत के कितने अच्छे, तो अच्छे गाने डेफिनेटली जैसे कि केसरिया, जब वो बेहतरीन गाना था, राइट? लेकिन फिर ऐसे भी आते हैं जो बंदा सुन के कहते हैं
3: so pretty and then suddenly the next song you hear is like all mixed up with English, Mexican, Spanish and Punjabi together. I'm like, what happened to the language base?
1: बिल्कुल सही, बहुत वैलिड पॉइंट श्री आपने दिया है। थैंक यू फॉर योर कॉल, आई अप्रिशिएट इट। सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस। Alright जी, अब हमारा एक मिनट रह गया है ब्रेक का, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग। फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
4: हाय, मैं सौरभ।
1: इज इट सौरभ?
4: यस।
1: ऑलराइट जी सौरभ, बताइए किस तरह के गाने आजकल आपको पसंद हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
4: नहीं, मैं ऑन अ फनी नोट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल के जो गाने हैं ना, उनमें क्या होता है कि लहंगा, झुमका, कंगना, बिंदिया, कजरा, इन सब की बारे में ज्यादा बात होती है।
1: जी जी,
4: तो आजकल के गाने इसमें से क्या है, ज्यादा खर्चीले हुए, तो लोग पसंद नहीं करते हैं।
1: अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट, वैसे आजकल
4: और इसमें से और दूसरी चीज है कि जैसे कल मदरसे था तो हम लोग माँ के लिए गाने सर्च कर रहे थे, कुछ ढंग के कुछ गाने मिले नहीं, मतलब नए गाने तो कुछ मिले नहीं, पुराने गाने जो भी थे वो मिले थे।
1: जी जी,
4: तो इस वजह से लगता है कि लोग ना लिरिक्स का जो काफी इम्पैक्ट पड़ता है, और लिरिक्स है ना जो इतना टच नहीं कर पाता लोगों को आजकल के गानों में, यही यही फील है मेरा।
1: राइट, कमिंग बैक टू लिरिक्स। ऑलराइट सौरभ, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट। ऑलराइट जी, वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, आई हैव टू अनाउंस द विनर।
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है, From timeless gold and

0: Canadian Diamonds to Heritage Polkis. Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
2: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
2: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
1: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
3: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी एट 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सास।
4: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: सब कुछ साफ रख सकते हो,
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
13: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है, पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
0: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
13: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
0: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
14: May 14th to May 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org। पॉज द नॉइज, मीट yourself.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

ऑलरेडी यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो आफ्टरनून ड्राइव टाइम सुन रहे हैं सुनहरी किरण के साथ. शिखा, आप हैं विनर हमारी कॉन्वर्सेशन कॉर्नर की, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. यू हैव वन दिस $10 गिफ्ट कार्ड. इफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज गिव मी अ कॉल सो दैट आई कैन गेट योर डिटेल्स. वंस अगेन, आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक विद यू. कॉन्वर्सेशन कॉर्नर इज वन ऑफ माई favorite you know segments of every day, because I get to talk to you and hear your point of view. And today, Shikha, you are the winner. Please give me a call if you are listening.

और अजी पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे मैं किरण लेकर हाजिर हुई हूँ। दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम मंडेज को आपके लिए स्पेशल आपकी पसंद के गाने प्ले करती हूँ जी। हर रोज आपके लिए 2:30 से 5 बजे तक एक डिफरेंट फ्लेवर एक डिफरेंट यू नो एपिसोड लेके हाजिर होती हूँ और मंडेज का दिन इज डेडिकेटेड टू यू एंड योर रिक्वेस्ट। अगला गाना अशोक की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रहे हैं। दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी दामिनी, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी।

दामिनी फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना अशोक साहब की रिक्वेस्ट पे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी, दामिनी की बात हो रही है तो आपको याद है दामिनी फिल्म में एक बिल्कुल शुरू शुरू में गाना था बिन साजन झूला झूलूं। ये गाने में आमिर खान ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था और दैट वाज एक्चुअली राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को बनाया था दामिनी को, और वही आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना भी डायरेक्ट कर रहे थे। एंड आमिर खान से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि टू प्रमोट अंदाज अपना अपना आप इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में गाना दें ताकि अंदाज अपना अपना भी साथ प्रमोट हो जाए। और इसी के साथ रवीना टंडन भी दामिनी में इनिशियली रोल प्ले कर रही थी सनी देओल के ऑपोजिट, लेकिन बाद में उनके सीन्स को डिलीट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द मूवी। तो दामिनी मूवी से कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये भी। आपकी फयाज साहब की रिक्वेस्ट में मेरे पास लाइंड अप है गाना टेकन फ्रॉम द मूवी खलनायक। तो जी, खलनायक का ओरिजिनल गाना तो मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन खलनायक 2 की सीक्वल, मतलब खलनायक का सीक्वल जो है वो खलनायक 2 अनाउंस हो गया है, संजय दत्त ने अनाउंस किया है। और सुभाष घई कहते हैं, डायरेक्टर कोई और होंगे लेकिन सुभाष घई साहब का भी बयान आ चुका है, वो कहते हैं मेरे से बेहतर खलनायक कोई नहीं बना सकता। अब मुझे भी वैसे ऐसा ही लगता है, बट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट खलनायक 2 होल्ड्स फॉर अस।

खलनायक फिल्म जो कि 1993 में रिलीज हुई, बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर, सुभाष घाई ने इसको डायरेक्ट किया. वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैड सीन फ्रॉम सुभाष घाई, जिसमें संजय दत्त ने बल्लू का किरदार अदा किया, एक काइंड ऑफ एक एंटी हीरो, जो कि बाद में मतलब कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें एंटी हीरो भी हीरो लगता है, जैसे कि डर में शाहरुख खान थे और बाजीगर में शाहरुख खान थे, या फिर खलनायक में संजय दत्त थे. तो ज़रूर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स खलनायक 2 हैज इन स्टोर फॉर अस. बट इस वक्त अगला गाना जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरी हमनाम यानी कि किरण की तरफ से रिक्वेस्ट आई है. मदर्स डे का फीवर अभी चल रहा है जी, सो सेलिब्रेटिंग मदर्स डे वंस अगेन शी हैज रिक्वेस्टेड दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी तारे जमीन पर. किरण, गोइंग आउट टू यू.

taken from the movie Tare Zameen Par, Kiran ki request pe. Aur Kiran, main aapko batau, mujhe ek do callers ki call aayi and they loved this song and actually thanking you for requesting this beautiful song for not only yourself but them as well. To ji, ek gana jo aap request karte hain, wo sirf aapke apne liye nahi, balki the moment hum usse play karte hain, wo tamam listeners ka ban jata hai. Everybody enjoys it equally. To aage badh rahe hain, agla. Acha, Tare Zameen Par ki baat jab hum kar rahe the, to main aapko bataun ki ek interview mein Aamir Khan ne bataya ki तारे ज़मीं पे का जो नाम है वो क्रेडिट सलमान खान को दिया उन्होंने, बिकॉज सलमान खान वो कहते हैं कि एक पार्टी में मुझसे मिले और मैं उनसे डिस्कस कर रहा था एंड दैट्स व्हेन ही सजेस्टेड द नेम तारे ज़मीं पे ऑफ द मूवी. तो ये हुई आपके लिए तारे ज़मीं पे की एक छोटा सा किस्सा. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप सोच रहे हैं टू प्रिपेयर योर USCIS पिटिशन एंड यू डोंट रियली नो वेयर टू स्टार्ट, तो वेदर इट्स एन H4 EAD एक्सटेंशन या फिर F1 OPT एप्लीकेशन, या आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपनी फैमिली का ग्रीन कार्ड पिटिशन, यू कैन नाउ प्रिपेयर इट योर एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ एट easypetition.com, EAZY, easypetition.com. यही नहीं, इफ अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट योर जॉब ऑन एन H1 एंड यू वांट टू प्रिपेयर अ चेंज ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन, देन यू कैन डू दैट एट easypetition.com एज वेल. इसी के साथ बहुत सारा कुछ आप easypetition.com के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं. प्लीज लॉग ऑन, चेक देम आउट. दे आर सिंपल, दे आर गाइडेड एंड दे आर डिजाइंड फॉर इमिग्रेंट्स हु वांट टू फाइल देयर एप्लीकेशंस कॉन्फिडेंटली एज वेल एज कीप दैट कंट्रोल इन देयर हैंड. दिस इज वंस अगेन easypetition.com, EAZY, easypetition.com. एंड व्हेन यू आर चेकिंग आउट, डों't फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड FUNASIA, FUNASIA. $30 का क्रेडिट आपको मिलेगा व्हेन यू यूज द प्रोमो कोड FUNASIA. वंस अगेन, दैट वेबसाइट इज easypetition.com.

0: और जी एक मिनट दूर हैं हम ब्रेक से. ब्रेक पे जाते हुए आपको बता दूं कि 4 से 4:30 तक आपके लिए लेके आऊंगी करेंसी, वेदर, ट्रैफिक एज वेल एज गोल्ड प्राइस अपडेट. और 4:30 से 5 बजे तक एज ऑलवेज मंडे को कनेक्ट करते हैं हमारे साथ संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेज. आपकी कॉल्स लेंगे लाइव. आपका कोई भी सवाल है सिविल लिटिगेशन या फिर फैमिली लॉ या फिर यू नो इमिग्रेशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मिस्टर माथुर विल बी हेयर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. 9722355555 विल बी दैट नंबर. तो तैयार रहिए 4:30 से 5 बजे तक माथुर जी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव. एंड विद दैट हम बढ़े हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ. फिल्मी फरमाइश का ये सेगमेंट आपके लिए खत्म हुआ ये 1.5 घंटा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिक्वेस्ट, फॉर ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट दैट यू मेड, जो हम तमाम हमारे फन एशिया के लिसनर्स एंजॉय करते हैं. इसी के साथ मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद. बने रहिए, चैनल चेंज मत कीजिएगा. बस ब्रेक पे यूं गए और यूं आए.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा.
8: कौन सा?
7: कैरेट लेन.
8: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
7: हाँ वही.
8: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
7: देखा, ढूंढ के दिया ना.
9: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को. लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे. कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट.
10: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
14: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
13: K2 ड्राइव मतलब
14: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
13: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
14: 100%
15: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
16: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट
7: When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
16: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Main hoon Kiran. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with me this afternoon. आगे बढ़ रहे हैं जी. Weather की update का वक्त आ चला है, लेकिन उससे पहले जो आपके साथ में connected रहती हूँ 2:30 से 5 बजे तक, तो आपको बताती चलूँ कि all the views and opinions that you listen to us in these live announcements as well as the interviews that we do here on our station are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ. तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसी के साथ it is time to give you the weather update. May the 11th, Monday है आज, 4:09 हुए हैं स्टूडियो में और according to WeatherBug, इस वक्त सिटी ऑफ मिकिनी में है जी 75 degrees and it feels like 75 as well. दिन रहा partly cloudy, partly sunny. Highs जो हैं वो upper 70s तक रहे, जबकि शाम रहेगी mostly clear with lows in the upper 50s. So it is going to be a cold and a beautiful day again today. Pollen count is also not too bad, 5.8, which is medium. Grass and oak is what is bothering in pollen. UV index is 8, which is kind of medium high. जबकि sunrise आज का हुआ 6:29, 6:29 AM पे आज का sunrise हुआ और आज का सनसेट होगा 8:16 PM. और इसी के साथ आपको बता दी चलूं जी कल के बारे में. कल विच इज ट्यूजडे मे द 12th, दिन रहेगा सनी विद हाईज इन द लोअर 80s, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द लोअर 60s. सो ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल डे टुमारो एज वेल. दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

और अजीत दिलेर मेहदी साहब की आवाज में. वैसे तो ये गाना आप बहुत पहले सुन चुके हैं, लेकिन ये एक रीमिक्स्ड वर्जन था टेकन फ्रॉम द मूवी विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो. हम इसमें नजर आए थे, देखिए कौन थे, राजकुमार राव थे. हाँ बिल्कुल, राजकुमार राव हमें इस मूवी में नजर आए थे. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं. इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. और आज मंडे मे द 11th 4:15 PM इन द स्टूडियो, अकॉर्डिंग टू xrates.com, यूरो आज स्टैंड कर रहा है 0.84 पे विद रिस्पेक्ट टू 1 US डॉलर, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73. इंडियन रुपी 95.39 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी इज स्टैंडिंग एट 278.64. नेपाली रुपी 152.70 नेपाली रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर, जबकि बांग्लादेशी टका 122.92 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट देते हुए अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे. आज इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org एक आउंस गोल्ड की कीमत है $4,735.59, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत $152.25 है. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.58 का इजाफा देखने को मिला, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $49.35 का इजाफा देखने को मिला. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

तमन्ना भाटिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे पिक्चराइज्ड ये गाना आप सुन रहे थे। और अब जी वक्त आ चला है आपको ट्रैफिक अपडेट देने का। वंस अगेन आपको याद दिलाती चलूँ, 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ संजय माथुर जी कनेक्टेड होंगे। सो इट इज़ टाइम नाउ टू गिव यू अ ट्रैफिक अपडेट। और द गुड थिंग इज दैट एक ही हमें डिस्टर्बेंस नजर आ रही है रोड पे, एंड दैट इज एट US 75 टूवर्ड्स बेल्ट लाइन रोड साउथ बाउंड। इसकी वजह से 2 लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन। The severity of the incident is reported high. और एज वेल एज ये कि अभी कोई 10 मिनट पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा बैकअप देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर यू नो प्लानिंग टू बी हेयर गोइंग थ्रू दिस राउट और समथिंग लाइक दैट, तो आप कुछ बैकअप और डिलेज एक्सपेक्ट कीजिए। दिस इज एट US 75 टूवर्ड्स बेल्ट लाइन रोड साउथ बाउंड। बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम।

जी हाँ जी, इस गाने के साथ अगला गाना प्ले करते हुए मैं आपको लेके जाऊंगी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर, जैसे आई वाज टेलिंग यू, वी विल बी कनेक्टिंग यू विद संजय माथुर जी ऑफ माथुर लॉ ऑफिसेज. आपका कोई भी सवाल, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल इंजरी, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ, ही विल बी टेकिंग देम लाइव राइट हेयर ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. 4:30 टिल 5 PM ही विल बी हेयर विद अस. अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं, आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है कि ही इज रिप्लाइंग टू अ प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्लीज अपनी लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा. दैट मीन्स इफ यू कैन लिसन टू हिम ऑन योर फोन, दैट मीन्स यू आर नेक्स्ट ऑन एयर और इन लाइन टू आस्क योर क्वेश्चन. सो होल्ड योर स्पॉट इन लाइन. मिस्टर माथुर इज हेयर विद us 4:30 PM till 5

टू अ प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्लीज अपनी लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा. दैट मीन्स इफ यू कैन लिसन टू हिम ऑन योर फोन, दैट मीन्स यू आर नेक्स्ट ऑन एयर और इन लाइन टू आस्क योर क्वेश्चन. सो होल्ड योर स्पॉट इन लाइन. मिस्टर माथुर इज हियर विद अस 4:30 PM till 5 PM. Stay tuned and I will see you after the break.

0: You turned down that job to become a diving instructor.
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hai.
4: Arey sun, ye एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
8: अरे यार, डालस में पंजाब?
4: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
9: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho,

0: पार्टी हो या कॉर्पोरेट इवेंट, चंडीगढ़ वाले ब्रिंग्स लाइव पंजाबी केटरिंग स्ट्रेट टू योर सेलिब्रेशन. प्राउडली अवार्डेड बेस्ट ऑफ डैलस फॉर इंडियन फूड बाय डी मैगजीन. स्किप द फ्लाइट एंड टेक द शॉर्टकट टू पंजाब. चंडीगढ़ वाले, इरविंग, वेयर डैलस मीट्स पंजाब.
1: इमिग्रेशन अटॉर्नीज इन द DFW एरिया. इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर क्लाइंट बेस एंड रिड्यूस योर ओवरहेड्स, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
5: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
6: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

चैनल लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इन दिस ड्राइव टाइम 5 to 7 PM. यूजुअली मार्विन इज हियर एंड ही डज सच अ टेरिफिक जॉब, बट सिंस ही इज ट्रैवलिंग, दिस इज योर होस्ट पावल भाटिया कवरिंग अप फॉर हिम. एंड फॉर श्योर बिंदास मार्विन, वी मिस यू हियर. तो जल्दी आओ वापस भाई. खूब मस्ती मस्ती में, जैसे कहते हैं ना, ट्रैवल जो आपको एक न्यू लाइफ देती है, तो थोड़ा बहुत ट्रैवल तो बनता है. आई एम श्योर नाउ दैट बच्चों के स्कूल ख़त्म हो रहे हैं, कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है, वो समर की वेकेशन आ रही है, तो आपके भी प्लान्स बन रहे होंगे इधर गोइंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, यूरोप में भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा या कहीं और, साउथ अमेरिका. तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, ज़रूर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि अगर ऑलरेडी आपके प्लान्स बन गए हैं तो क्या हैं वो प्लान्स. आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्चुअली एक गाने से, जिससे, क्योंकि माधुरी दीक्षित का बर्थडे आने वाला है विच इज़ ऑन May 15th, तो मैंने कहा उनका ही एक गाना क्यों ना प्ले किया जाए. और ये जो इनका पर्टिकुलर गाना है, ये है तो 90s का, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है. इनफैक्ट द मूवी डिडंट डू सो वेल, बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग डिड रियली वेल. इस गाने में शाहरुख खान भी हैं और शाहरुख खान का रोल इसमें थोड़ा नेगेटिव है, आप समझ गए होंगे. जिसे कहते हैं ना, इशारा ही काफ़ी है, आप एकदम समझ गए होंगे. इफ यू आर माधुरी दीक्षित फैन, इफ यू आर शाहरुख खान फैन, देन यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट.

And this was taken from the movie Anjaam. Deepak Tijori भी थे इस फिल्म में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ. और एक बात तो पक्की है कि मैसेज अच्छा था. यूजुअली क्या होता है कि मैसेज हो जाता है कि भाई हीरो जो है बहुत मैडली इन लव है एंड देन ही रियली लाइक जैसे कहते हैं ना परस्यू करते हैं वो फीमेल हीरोइन को, हीरोइन को करता है परस्यू एंड इतना परस्यू करता है दैट द फीमेल हैज़ नो चॉइस बट टू सकम. बट दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म. इट डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ मैसेज विच वॉज अ वेरी डिफरेंट मैसेज. And it was not easy for Shah Rukh Khan like to do that role. For that matter, a lot of other heroes were given that role. But he was the one who said, I will go ahead and take that chance. Well, listeners, aapko bata dun ki ye part of the segment is brought to you by Dream Home Mortgage. It has been helping families achieve home ownership since 1998. Licensed in all 50 states, their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For details, call Sharmeen or Hussain Panjwani. Unka number note kijiye 972-245-5626. And you can also visit their website, which is dreamhomemortgage.com. Next film ka gaana main play karne wali hoon. Wo film shayad जितनी अंजाम चली थी वो उतनी भी नहीं चली थी. आप कहेंगे ऐसी ऐसी फिल्म को गाने क्यों बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये गाने अभी भी जैसे कि चने के खेत में इतना पॉपुलर है. ये जो नेक्स्ट गाना है ये भी बहुत पॉपुलर है. फिल्म है मोहब्बत. इस फिल्म में थे अक्षय खन्ना, माधुरी दीक्षित एज वेल एज वन मोर पर्सन दैट वॉज संजय कपूर. एंड द म्यूजिक वॉज गिवन बाय नदीप श्रवण. म्यूजिक डिड रियली वेल एंड इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी थी, यानी कि अक्षय खन्ना एंड माधुरी दीक्षित की जोड़ी. कभी कभार मन करता है कि ये जो 90s के कपल्स हैं ये वापस फिर से आ जाएं और इनके ऊपर एक नई तरह की फिल्म बने. दे डोंट हैव टू प्ले यू नो यंगस्टर्स रनिंग अराउंड ट्रीज गोइंग टू द माउंटेन्स एंड इन शिफॉन साड़ीज एंड इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द मेकअप द वर्क्स. बट वो भी अच्छा रहेगा नहीं, वो भी होना चाहिए या कैरेक्टर रोल भी होना चाहिए, बिकॉज दीज आर रियली सीजन्ड एक्टर्स. तो ये मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट गाना प्ले करने वाली हूँ, राइट हियर, बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट.

बात हो रही थी माधुरी दीक्षित की, और माधुरी दीक्षित के इतने आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। मैंने कुछ गाने तो चलाए जिसमें फिल्म ने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन गाने तो बहुत बढ़िया चले बिकॉज उसमें माधुरी दीक्षित खुद डांस कर रही थी तो चलने ही थे। लेकिन ये पर्टिकुलर गाना ऐसा है कि अगर मैं नहीं प्ले करूँ देन इट विल बी काइंड लाइक, अरे यार माधुरी दीक्षित का गाना है ये, वो वाला गाना है जिसमें उन्होंने टोटल धमाल मचा दिया था इस गाने के थ्रू। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, साथ में है द वन एंड ओनली उदित नारायण, एंड इनके साथ हैं संजय कपूर के भाई अनिल कपूर। आप समझ गए होंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर गाना हैज़ बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग फॉर बोथ ऑफ देम, एंड अनिल कपूर इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज यू नो एक्टर्स हु वाज पेयर्ड विद माधुरी दीक्षित एंड दे मेड एन अमेजिंग पेयर। उनका जो आपको याद है धक धक करने लगा गाना तो था ही, लेकिन ये गाना एक और है, धक धक करने लगा तो गाना ही है, एक दो तीन की बात मैं सोच रही थी, लेकिन अब मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ये अनिल कपूर के साथ वाला गाना, यानी कि आई ऑलरेडी सेड इट एंड आई विल वेट नो फर्दर, आई विल गो अहेड एंड प्ले इट फॉर यू।

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी? डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। AG फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
14: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
15: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
14: रोज का सेम प्रॉब्लम।
16: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
17: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
16: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
0: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
18: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
13: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

जी हाँ, द फेमस नेचुरल साइंस, जिसे कहते हैं कि द वुमन हु बिलीव्ड इन मेकिंग दिस अर्थ ग्रीन, हु रियली बिलीव्ड इन मेकिंग अ डिफरेंस, जेन गुडॉल सेड, व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक. व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस डू यू वांट टू मेक? आर यू, जिसे कहते हैं हवा का झरोका हर जगह पहुंच जाते हैं, या आप सोचते हैं कि यहाँ जाऊँ यहाँ नहीं जाऊँ, या मैं 5 चीज़ें कर रहा हूँ तो 2 करूँ, या मैं 10 चीज़ें पका रही हूँ तो शायद एक ही पकाऊँ. व्हाट इज़ इट दैट दैट ड्राइव्स यू? व्हाट इज़ इट दैट इज़ योर मोटो? आप मुझे डेफिनेटली कॉल करके बता सकते हैं. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू, अभी जहाँ इतनी बातें माधुरी दीक्षित की हुई हैं, हु इज़ अ टॉरस, उनका बर्थडे आ रहा है May 15 को. आई एम गोना मूव ऑन टू अक्षय खन्ना. वाई अक्षय खन्ना? उनका बर्थडे तो अभी नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अक्षय खन्ना एंड माधुरी दीक्षित की बात करी थी. तो 2 गाने मैं उनके भी प्ले करने वाली हूँ एंड फिर एक क्विज भी आने वाला है आप लोगों के लिए. लेकिन लेट्स हियर इट, दिस इज़ अ डिफरेंट सॉन्ग. आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड इन अ वाइल. फिल्म थी नकाब और इसमें थे बॉबी देओल, उर्वशी शर्मा और एक दिन तेरी राहों में. ये गाना है जावेद अली की आवाज़ में, समथिंग रियली डिफरेंट, थोड़ा हटके.

0: All right, someone was asking, Anita ji was asking कि भाई अक्षय खन्ना और माधुरी दीक्षित कोई फिल्म में इकट्ठे आए थे, तो जी हाँ मैंने एक गाना प्ले किया था तभी उनकी बात हुई. वो आए थे फिल्म मोहब्बत में और फिल्म ने इतना कुछ अच्छा नहीं किया, 1997 की फिल्म थी, लेकिन ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट दैट सॉन्ग बिकेम वेरी वेरी वेरी पॉपुलर. और अभी जो मैंने गाना उनका प्ले किया फसला, इसमें एक मीम था, ठूस ठूस तू कुछ भी मत खा, तू ठूस ठूस तू कुछ भी मत खा, उसके इतने मीम्स थे, क्योंकि ये जो अरबिक लैंग्वेज है, ये डिफरेंट लैंग्वेज थी, अरबिक भी नहीं थी, दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज, एंड वी कुड नॉट टेल, येट दिस सॉन्ग बिकेम लिटरली लाइक अ नेशनल, जिसे कहते हैं ना मैग्नेट, एवरीबडी वॉज सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. एंड विद दैट एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है लिसनर्स, और उसके बाद और भी गाने होंगे और बातें होंगी बॉलीवुड की. And as always, it's so much fun to play songs for you and to get so much love and support and calls from you all. Studio ka number 972-235-5555. Main hoon aapki host Parul Bhatia, sitting in for Marvin today, and I will be here the next 3 days as well. You know, I love this quotation by Malala Yousafzai, who says, "One child, one teacher, one book, one pen can change the world."
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
12: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
11: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
14: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
15: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who need just least once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.escorialcpa.com.
16: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
17: I've been researching retirement planning.
18: Oh, really? Where?
17: Google, YouTube, a guy on TikTok.
18: Or you could just talk to WealthTactic.
17: What's the difference?
18: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
12: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
19: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
0: गाने और एक के बाद ऐसे गाने जो कि बस मन करता है कि सुनते रहें, मस्ती मारें, थोड़ी बहुत रिलैक्स करें. लेकिन यू नो व्हाट लिसनर्स, बहुत आजकल मोटिवेशनल बातें चल रही हैं, ऐसी बातें कि जिससे कि खुद का डेवलपमेंट के बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेस ऑन दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दैट. इन फैक्ट रॉबिन शर्मा हैज सेड द स्विफ्टेस्ट वे टू ट्रिपल योर सक्सेस इज टू डबल योर इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल डेवलपमेंट. तो आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें ज़रूरी होती हैं. माइंडफुलनेस ज़रूरी होती है. व्हेन वी जस्ट सिट डाउन एंड टेक अ मोमेंट, एंड जब चाय पीते हैं तो उसको बस माइंडफुली पिएं. इनफैक्ट इधर उधर ना भागें, क्योंकि माइंड ऐसा होता है, वी आर ऑलवेज रनिंग, आर माइंड इज ऑलवेज रनिंग. एंड दे से इट्स सो इम्पॉर्टेंट व्हाट यू टेल योरसेल्फ, बिकॉज आर माइंड नॉर्मली गेट्स इनटू अ लूप द मिनट वी गेट अप. डू वी रश टू द phone and right away try to, you know, go ahead and see what's going on in the world, or do we just sit down and just take a few deep breaths and ask ourselves and tell ourselves, you know what, I'm going to have a wonderful day today. Despite the toxicity, despite the negativity, I will enjoy myself today. I will breathe in the smell of the roses from the garden, even if there are no roses. I can always have that in my imagination ki bahar, ghar ke bahar गुलाब खिले हुए हैं और उनको सूंघ के कितना सुंदर दिन होने वाला है मेरा. इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि माय टाइम इक्विटी, इफ़ यू नीड फाइनेंशियल गाइडेंस देन माय टाइम इक्विटी लेड बाय द वन एंड ओनली सीपीए सुधीर पाय ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. So for more information, you can visit the website, which is mytimeequity.com, or the number to call is 469-702-1272. That's CPA Sudhir Pai's number, 469-702-1272. And listeners, the next song is also a very big song. But after this song, I've brought a quiz for you guys. There's no quiz with this song. Just take it easy, enjoy, just... You know, वैसे भी आप टेक इट ईजी ही करते हैं, आपको सारे ऑलरेडी पता होते हैं आंसर्स. दैट्स हाउ वी आर व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड. वी हैव अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, जनरल नॉलेज. ये गाना बहुत ही कूल है, अंकित तिवारी एंड अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं अंकित तिवारी. और ये गाना, उसमें एक कुछ गानों में एक ऐसी फीलिंग होती है ना दैट यू हर्ड इट बिफोर, बिकॉज यू नो यू माइट हैव टेकन इट फ्रॉम अनदर कंट्री, एंड इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट सॉन्ग म्यूजिक. The power of music is stronger than so many other senses. So here we go. I'm going to play the song for you for your exclusive entertainment right here on the waves of Fun Asia Radio, bringing the community together.

0: You tired of trading time for money and wondering if there's something more? What if you could help build a career with purpose while helping families make smarter financial decisions? At Wealth Tactic, we're expanding and looking to mentor individuals who want to grow in the financial services industry. You don't need prior experience. What matters most is drive, coachability, and a genuine desire to help people. We provide training, mentorship, and a system designed to help you build long-term income and personal growth. For many people, this opportunity has opened the door to flexibility, leadership, and a meaningful career helping others. If you're ready to explore a new direction and a fresh start, we'd love to connect. Call Wealth Tactic at 469-693-2077 to learn more. Again, that's 469-693-2077. Wealth Tactic, your next chapter starts now.
1: Indeed, your next chapter starts right now and right here. And what is the next chapter, listeners? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप जब खाना खाते हैं आपको कौन सा स्वाद सबसे अच्छा लगता है. वेट, फिर से मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. आर यू रेडी? जी हाँ लिसनर्स, क्वेश्चन ये है कि जब आप खाना खाते हैं आपको सबसे अच्छा स्वाद क्या लगता है? तीखा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा? What is your most go-to snack? अगर आप मुझे कॉल करके बताएंगे तो बस मस्ती होगी, बातें होंगी, चाय की बातें होंगी, और साथ साथ आप एक अपना स्पेशल गाना भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. How about that? स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. और एंड में मैं बताऊंगी कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्नैक और सबसे ज़्यादा टू गो स्वाद कौन सा है. Stay right here. Keep listening. And I have this next song for you already. ये एक्चुअली नई फिल्म आई है, शाहिद कपूर थे इसमें, दिशा पत्नी एंड साजिद नाडियावाला की प्रोडक्शन में, विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन में, गुलजार के लिरिक्स, और ये गाना पान की दुकान जिसमें जो कि लिया है फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो हाउ शाहिद कपूर इज सच अ फैंटास्टिक डांसर. आई मीन ही इज जस्ट वेरी वेरी टैलेंटेड. So here is a song for you. Meanwhile, you can call me with your taste buds. What do you like to eat?

0: Phanasia Radio, you live on air. Who's this?
1: This is Nadeem.
0: हाँ नदीम जी बताइए.
1: बेगम के हाथ का स्वाद खिचड़ी खीमा पापड़ और तिल की चटनी.
0: ओह माय गॉड, वाओ,
1: दैट्स इट.
0: तो देखिए खिचड़ी में नमकीन हो गया, पापड़ में थोड़ा तीखा हो गया होगा, राइट?
1: हाँ हाँ.
0: ओके, और तिल की चटनी कैसी होती है? आई नेवर हैड दैट.
1: तिल की यू नो सेसमी सीड.
0: या ऑफ कोर्स, या
1: उसको पीसो और उसके अंदर प्याज डालो.
0: अच्छा.
1: और उसमें थोड़ा सा दही डालो.
0: Oh.
1: और उसमें थोड़ी सी काली मिर्चे.
0: ओह माय गॉड, दैट साउंड्स अमेजिंग. और तिल को आपको पहले भूनना पड़ता है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बना दो.
0: ऐसी बना.
1: और ये सबसे बेहतरीन हैदराबादी खाना.
0: ओके, तो खिचड़ी हो गई, आपका तिल की चटनी हो गई, पापड़ हो गया एंड दही, राइट?
1: नहीं, खीमा.
0: कीमा, ओ माय गॉड, आप सच में क्या जो आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, बहुत ही बढ़िया है, मस्त है.
1: चले,
0: थैंक यू.
1: ओके, बाय.
0: ओके. पान की दुकान. पान भी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज पान में भी बहुत कुछ होता है. वैसे मीठा होता है, तीखा तो नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी गोरमे पान की दुकान में जाएं तो आजकल वो भी मिलता है. चॉकलेट पान, मार्शमेलो पान, एंड यू नेम इट, पान टाइप्स सब कुछ होता है. लेकिन मीठा डेफिनेटली होता है. और साथ साथ जहाँ मीठे की बात आई है, ये नेक्स्ट गाना बहुत मीठा है. आई एम स्टिल टेकिंग कॉल्स. आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जो अभी नदीम जी ने हमें बताया कि इतना कुछ बढ़िया उनकी बेगम क्या क्या यमी खाना बनाती हैं. ही इज़ वन लकी पर्सन, डोंट यू थिंक? विद दैट, हियर इज द सॉन्ग विच इज स्वीट, ट्विस्टेड.

0: फन एशिया रेडियो यू लाइव ऑन एयर. हू इज दिस?
1: अली.
0: हाय अली, बताइए आपको क्या पसंद है?
1: आपने कभी कड़ी खाओ से खाए?
0: नहीं, ये क्या होता है?
1: कड़ी खाओ से नहीं खाया तो क्या खाया आपने जिंदगी में?
0: अच्छा, पहले आप डिस्क्राइब तो करिए, है क्या चीज?
1: अच्छा, स्पेगेटी होती है ना, लाइक एंजल, जो भी स्पेगेटी, वो बोल होता है. फिर बीफ की छोटी छोटी टाकों की साइज की सालन बनता है, विच इज कड़ी बनती है. टाको साइज की बीफ कटती है, उसकी कड़ी बनती है, उसका वो बनता है. उसके अलावा कोकोनट कड़ी होती है, विच इज कोकोनट कड़ी में जो कोकोनट कड़ी, कोकोनट मिल्क जो मिलता है ना कैन,
0: या वो उससे बनती है.
1: उसको खोलकर उसमें फिर थोड़ा सा चने का आटा डालकर, बाजरे का आटा डालकर उसको ग्राइंड करते हैं. उसके बाद फिर अंडे बॉयल अलग होते हैं, आलू बॉयल अलग होता है, फिर ग्रीन प्याज अलग होती है, सब छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, फिर इसको मिक्स करके फिर खाते हैं.
0: और ये कहाँ मिलता है ये तो बताइए?
1: आपके घर में नहीं मिलता है?
0: आपके घर में मिलता है?
2: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
3: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
2: ओह गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
3: अहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
2: कैसे?
3: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
2: ओह, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
3: या कैरेटली इन काइंड.
4: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry, made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: बावर्ची बिरयानीज इन प्लेनो, बिगर, बेटर एंड द बेस्ट नाउ सर्विंग एवरीडे लंच स्पेशल्स, थालीज, बिरयानी कॉम्बोज एंड रिफ्रेशिंग ईरानी चाय विद डिलिशियस इंडियन स्नैक्स, फ्रेशली मेड स्वीट्स एंड बेकरी आइटम्स. प्लीज वॉक इन टू बावर्ची प्लेनो और विजिट bawarchiplano.com.
8: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
4: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
9: सब कुछ साफ रख सकते हो,
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
4: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए. easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी. आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com.
12: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
13: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
12: कैसे?
13: पेज 3 ईटरी?
12: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
13: Dude, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
12: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी. यानी कि मैं।
4: पेज थ्री ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
9: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: All right, बहुत ही अभी एक्चुअली बातें हो रही थी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में. We have one more person on air. Who's this? Hello, your name?
14: Hello?
0: Yes, your name please.
14: मेरा नाम फवाद है.
0: Yes, फवाद, बताइए.
14: बस बढ़िया, आप कैसे
0: हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप बताइए कि कौन सा आपको जायका है जो बहुत अच्छा लगता है, और कोई अगर डिश भी है दिमाग में तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं.
14: मेरा बीबी वाला.
0: अच्छा, क्या बनाती है आपकी बीबी?
14: मेरा बीबी तो ये मोमोज है ना, मोमोज बहुत अच्छा बनाती है वो.
0: अच्छा, मोमोज. मोमोज भी बहुत तरह के होते हैं, तो कौन सा बनाती है?
14: चिकन और पोर्क मोमो मिक्स वाला है, बहुत टेस्टी बनाते हैं, मेरे को बहुत पसंद है.
0: Yeah, it's also very popular now everywhere. Momos have taken over, like, you know, it's not just from the state it originally comes from, which is east part of India. Now it's popular everywhere. Thank you so much, Fawaji.
14: So, मैं उसके लिए एक गाना.
0: हाँ बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आप? That makes sense. कौन सा सुनेंगे?
14: केसरिया तेरा.
0: अच्छा, केसरिया
14: अजीत सिंह वाला.
0: ठीक है, आई विल से केसरिया, वो जो है आपका फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र, राइट?
14: यस.
0: ओके, दिस वन इज गोइंग आउट टू यू एंड टू योर वाइफ हु मेक्स लाइक जस्ट अमेजिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मोमोज. Enjoy.
14: Thank you so much.
0: You're welcome.

0: Phanasia Radio, you're live on air. Who's this?
1: Hi, it's me, Susanna.
0: Hi. What taste are you into? Which one do you go to mostly?
1: Mera husband jo hai, wo अभी उसने भी कॉल किया था.
0: अच्छा, the momo person. You're the one who makes the
1: momos. Yeah, momo person.
0: अच्छा, the one. You're the one who makes the momos, right?
1: Yeah.
0: Okay, tell me.
1: But I cook everything. Like I like cooking, so I love cooking. So मैं तो जो भी सभी बनाती हूँ.
0: अच्छा, लेकिन उनको आपके momos बहुत पसंद है.
1: No, momos तो मेरा best है. पहले मैं sell भी करती थी.
0: Oh really? अच्छा तो आप which part of where are you from originally?
1: Original from Nepal.
0: Oh my god. तो नेपाल का खाना बहुत अच्छा होता है. मुझे पता है कि वहाँ की दाल वगैरह भी
1: momo से तो पहचानते हैं नेपाली को momo से.
0: हाँ, तो आप लोग की दाल भी बहुत अच्छी होती है, isn't it?
1: Yeah. हमारा वो traditional dish है दाल भात तरकारी बोलते हैं. उसमें वो हमारा राइस होता है और सब्जी तो हम एक ही जैसा होता है आपको और हमारा.
0: अच्छा, सब्जी काफी मिलता है लेकिन दाल अलग होता है, करेक्ट?
1: हाँ, दाल अलग होता है.
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड आपकी फेवरेट डिश क्या, आपने बताया नहीं मुझे.
1: मेरे फेवरेट डिश वो बनाता है वो चने का वो चाट जैसा.
0: अच्छा, योर हस्बैंड मेक्स.
1: या मेरा हस्बैंड, और चटपटे जैसा वो मुझे बहुत पसंद है.
0: क्या बात है. तो वो आप उनकी चाट खाती हैं, बढ़िया सी वो चने की चाट बना देते हैं आपके लिए और आप उनके लिए मोमोज बनाती हैं, तो काम चल जाता है.
1: हाँ, काम चल जाता है.
0: काम दोनों का चल जाता है.
1: वो हमारा सखना बनाती है, मैं उसका डिनर बनाती हूँ.
0: परफेक्ट. दोनों मिल बांट के काम करके बढ़िया खाना खा के एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती मारते हैं, तो वो लग भी रहा है आपके दोनों का रिलेशनशिप में, ऐसा लग भी रहा है. इज दैट राइट? एम आई राइट इन सेइंग दैट?
1: या एब्सोल्युटली राइट.
0: Touchwood, and with that, I mean, keep enjoying each other's company and keep making these yummy things for each other. और क्या चाहिए लाइफ में? यही चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान.
1: चाहिए मस्त रहना, खाने का पीने का मस्त रहना.
0: हाँ, मोमोज, कपड़ा और मकान एंड चाट. ओके, एंजॉय.
1: एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ.
0: हाँ बताइए, इसके बाद आपके लिए भी चला देती हूँ, उसके बाद मेरी बारी आएगी. लेकिन आप बताइए आपको कौन सा सुनना है.
1: ओके. पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साधन के द्वार चली रे. ए, बजा दीजिए.
0: ठीक है, मैं आपके लिए डेफिनेटली यही बजाती हूँ. टचवुड, एंजॉय योर इवनिंग टुगेदर. पालकी में होके एंजॉय. थैंक यू,
1: बाय.
0: हाँ, बाय. Well, that song is of course very cute. Palki mein hoke sawar chali re. And usme bhi Madhuri Dixit hain. Aaj Madhuri Dixit, since her birthday is coming up on May 15th, it seems like, it seems like her day today. Because aisa hua ki maine ek do gaane soche the, lekin uske baad bas ek silsila sa ho gaya unke gaano ka. To ye wala gaana main aap logon ke liye play karne wali hoon. Especially for this couple, the momo and chole wala couple, the chole chaat wala couple, inke liye main gaana play karne wali hoon. Aur ye liya hai from the film Khalnayak. Enjoy!

मैं सवाल पूछूंगी और वो यही सवाल था कि आपका सबसे चटपटा या आपको क्या पसंद है। तो ये जो कपल ने मुझे कॉल किया, मुझे इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी, जिन्होंने गाना भी रिक्वेस्ट किया, सो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक। व्हाई? बिकॉज यू हैव वन समथिंग फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। यस, दिस इज अ गिव अवे एंड गिव मी अ कॉल बैक सो दैट यू कैन गेट दैट गिव अवे, द मोमोज एंड द छोले चाट कपल।

0: कर कर के मैं
1: फनीशिया रेडियो हूज दिस
2: हाय माय नेम इज सबा
1: हाय सबा कैन यू टेल मी व्हिच डिश यू लाइक एंड व्हाट्स योर फेवरेट टेस्ट दैट यू गो फॉर
2: स्वीट आई लाइक स्वीट
1: यू लाइक स्वीट्स द मोस्ट ओके कैन यू टेल मी व्हिच
2: वन करेंटली जो फेवरेट चल रहा है वो तो केक्स चल रहे हैं केक्स मतलब स्वीट फ्रूट्स वाले एंड जो आपका फ्रेंच टोस्ट होता है बेरीज वाले वो करेंटली फेवरेट चल रहे हैं एंड आई एम अ स्वीट टूथ तो मतलब आई थिंक उसको खा के कुछ सुकून मिलता है
1: स्वीट खा के आपको सुकून मिल जाता है
2: जी
1: ठीक है
2: बच्चों को सुलाने के बाद बच्चों को सुलाओ फिर वो बैठ के खाओ
1: अच्छा तो अभी देखिए जो मैं गिव अवे कर रही हूँ ना वो स्वीट नहीं है
2: यस आई नो बट चाइनीज ही मेरा फेवरेट है आफ्टर स्वीट
1: ठीक है तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ स्टे ऑनलाइन ओके
2: थैंक यू सो मच
1: Well, looks like it's Sabha ji's lucky day. तो उनको स्वीट पसंद है तो उन्होंने जीता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से इधर शी कैन हैव ड्राई चिली चिकन और चिली बेबी कॉर्न शी सेड शी लाइक्स चाइनीज ऑल्सो और ये डैलस इधर बटर चिकन भी बहुत अच्छा होता है आर एच सी पी का चिकन मक्खन वाला भी बहुत अच्छा होता है सो सबा विल हैव टू पिक अप वन ऑफ द लोकेशंस रिचर्डसन मिकिनी और एलन सो वन ऑफ दीज लोकेशंस नॉट फ्रिस्को So I'll take that information from her. Meanwhile, you continue enjoying this particular number.

0: Hi, who's this?
1: How are you? Yeah, this is Sujata.
0: Hi, Sujata. How are you?
1: Good. Just returning back from work.
0: Oh, wow. Going okay. हाँ, तो अभी आप कहाँ हैं? Which highway are you on?
1: I'm in Richardson now. So okay. I'm a teacher and then just going back home.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
5: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
4: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
5: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
4: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
5: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
4: नंबर बोल जल्दी।
5: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
6: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
7: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
10: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
12: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
17: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे।
18: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.

एंड रिसेंटली वी हैड, व्हाट रिसेंटली, कल ही था मदर्स डे एंड आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा. और जहाँ मदर्स डे का कोड होता है, जहाँ मदर्स कहती रहती हैं भाई खाना खाया, पानी पिया, फल खाए, वेजिटेबल्स खाई, वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कहाँ यार, ये तो सेम ही और पूछती हैं. पर एट द सेम टाइम आजकल ये भी चल रहा है कि प्रोटीन, माँ यू डोंट नो, दिस डज नॉट हैव प्रोटीन, दाल चावल डज नॉट हैव प्रोटीन एंड एवरीथिंग एल्स हैज प्रोटीन. लेकिन एक ग्रैंड माँ का भी कोड होता है, यू नो शी सेज बेड टाइम इज वेन एवर एंड द आंसर इज ऑलवेज येस एंड शी ऑल्सो सेज आई विल ऑलवेज हैव योर बैक. देन शी ऑल्सो सेज मम डजंट नो नीड टू नो एंड हग्स आर मैंडेटोरी. सो आप अपनी ग्रैंडमा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब बातें भी हम सोच सकते हैं अपने फ्री टाइम में, क्योंकि माइंडफुलनेस में क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, स्टॉप स्ट्रेसिंग, बी सिली लिटिल एज मच एज यू कैन एंड यू गॉट अ गुड हार्ट, अ गॉर्जियस सोल एंड द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. यू आर गोइंग टू बी ओके. You are going to be absolutely fine. So go ahead and just like the cub goes, you know, goes crazy with the mother lioness and also doesn't think twice before giving a slap to his own dad. Why? Kyunki wo pyar hai, wo masti hai. Aur jab father ko padta hai ya father gussa hota hai chote se cub pe, to mother kis pe gussa hoti hai? Ji haan, father pe. Yani ki the king of the jungle, the lion. To kuch masti, कुछ बातें, जैसे कि दैट कपल हैड कॉल मी, जो कि अपनी वाइफ के लिए छोले वाली चाट बनाते हैं, और साथ साथ द हस्बैंड हैड टोल्ड मी कि उनकी वाइफ हैं क्या बढ़िया मोमो बनाती हैं. और उससे पहले भी एक बहुत ही अच्छी कॉल आई थी जिसमें पता चला कि खिचड़ी उनकी वाइफ क्या बढ़िया बनाती हैं, अलॉन्ग विद आई थिंक ही सेड तिल की चटनी, साथ में कीमा एंड ऑल्सो कड़ी. तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत डेडली है. तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम मस्ती के साथ जिए तो डेफिनेटली लाइफ बिकम्स वर्थ लिविंग, लाइफ बिकम्स अ ड्रीम. एंड दे से समटाइम्स यू नो व्हेन यू जस्ट टॉक टू योर सिस्टर्स, सिस्टर्स गिव यू दैट दे आर सपोज टू बी एन एंटीडोट टू डिप्रेशन. क्योंकि थोड़ी देर में शायद लड़ाई हो जाए, आपकी लड़ाई हो जाएगी तो डिप्रेशन हट जाएगा, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे मस्ती कर सकती हैं, एक दूसरे की टांग खींच सकती हैं, और तो और यही बोल सकती हैं यार तू कर क्या रही है, व्हाई डू यू लुक सो फैट, और व्हाई डू यू लुक सो थिन, और व्हाई इज योर स्किन नॉट सो रेडिएंट एनीमोर. आप जो भी अपनी बहन को कह सकती हैं वो शायद आप सोचेंगी बिफोर सेइंग इट टू अदर्स. बट इफ़ यू आर लकी एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स हु आर योर सिस्टर सर्कल, देन दैट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज टू योर सिस्टर्स एंड टू दोज फ्रेंड्स हु आर लाइक योर सिस्टर्स, यू कैन बी योर सेल्फ. सो ट्राई टू फाइंड दैट पूल ऑफ पीपल वेयर यू कैन बी योर सेल्फ, जस्ट लाइक द मोमो एंड छोले चाट कपल गाय. एंड साथ साथ मैंने एक गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ. Before I say bye, ये गाना तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें है शाहरुख खान, the original पठान.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: You turned down that job to become a diving instructor?
3: Yeah, I thought Ma would say no.
2: And?
3: She said, build your life the way you dream it.
4: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
5: Chicken, banana. चिकन बनाना
6: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
7: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन दे डोंट जस्ट मेक इट दे मेक इट अनफॉरगेटेबल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बोल्ड फ्लेवर्स जंबो चिकन टेंडर्स नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
13: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉट लगी है क्या
14: लॉट की नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली